0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं

0: पद के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बँड 102.7 मेगाहर्ट्स आणि न्यूज ऑन AIR ऍप वर आकाशवाणीचं हे कोल्हापूर केंद्र आहे। सकाळचे 6:06 झालेले आहेत। ऐकूया भक्ती संगीताचा कार्यक्रम अमृतधारा।

0: और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मॉनसून

0: शून्य सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
3: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
4: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
3: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगे।

0: करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
1: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
2: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
3: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
5: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट

0: की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्य ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजाति समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बँड 102.7 मेगाहर्ट्स आणि न्यूज ऑन AIR ॲपवर आकाशवाणीचं हे कोल्हापूर केंद्र आहे। सकाळचे ठीक 8:15 वाजले आहेत।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
3: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
3: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
2: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
3: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
3: जी, तो श्रोताओं अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
2: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीले कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं की पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम

0: से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
1: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
0: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो, उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है। अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राजवैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे

0: इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
1: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
1: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
1: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
1: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
3: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
4: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
4: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
4: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
1: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
4: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
5: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
4: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
5: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
0: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
6: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा? गाड़ी में बैठ कर सिद्धार्थ से मिलना चाहिए। इसके पास जा रहा है।
5: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
1: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
0: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत

0: प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
1: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, घबराओ मत।
0: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
3: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
4: महाराज जय हो,
5: महाराज जय हो,
4: महाराज जय हो।
6: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

0: प्रचोदयात्।
1: पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: वत्स श्वेत केतु आज्ञात। क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।

0: श्वेत केतु। जी पिताजी। क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म

0: तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है
1: जी। पिताजी,
0: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जीतात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: ये रहा फल तात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी। पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी।
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो, यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है, तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है, और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि प्रवीण जैन। नमस्कार, स्वीकार करें। आप सभी जानते हैं सुरीला सफर में हम सब लेकर आते हैं कुछ बातें, कुछ गीत और कुछ प्यारे से किस्से और कुछ प्रश्न और कुछ उत्तर जो हम आपस में साझा करते हैं उस समय काल को। इबारत एक लिखी जाती है हमारे द्वारा जिसे हम भेजते हैं सोशल मीडिया पर, और यही जो इबारत है वह हमने भी आज भेजी है और उस इबारत को हम आपके सामने सुनाना चाहते हैं। इबारत है कि चंद सिक्कों की खातिर करोड़ों के रिश्ते छोड़ गया, देखो वो परदेश चला गया और वो परदेसी हो गया। बस इबारत इतनी ही है और इस इबारत को लिखने के बाद हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। हम वो बातें आपके साथ साझा करना चाहते हैं। हमारे श्रोता ने एक बड़ी प्यारी सी कविता कहें या कुछ चंद पंक्तियां कहें उन्होंने लिखकर भेजी हैं कि नयन भरे नीर मन होता अधीर, जिया में टीस यह समाई है, एक तो दूरी चांद से दूजे दो घूंट अपमान के, क्या यही परदेश की कमाई है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखी है कि एक तो दूरी चांद से दूजे दो घूंट अपमान के, क्या यही परदेश की कमाई है। कुछ सच्ची बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, सब बातें हैं। और इन्हीं बातों के बीच में हमारे और भी श्रोताओं ने लिखा, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की पहली बार इतनी छोटी मगर जीवन की सच्चाई को बयां करने वाली, दिल को चीर देने वाली बहुत ही गहन पंक्तियों को साझा किया गया है। रिश्तों की गर्माहट चंद सिक्कों की खनखनाहट के सामने कच्ची दीवार की तरह ढह जाती है। स्वार्थ परायणता और पैसे के पीछे की पागलपंती दौड़ मानवीय एहसासों और संबंधों को निर्लज्जता से मिटा देता है और हमेशा से पैसे ने एक रिश्ते से अधिक अपने को अधिक ताकतवर बनवाया है। जी, किसी हद तक आपकी बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत जीवन की सच्चाई से जुड़ी सच्चाई से भरी है। जहां रिश्ते नाते सब धन दौलत तराजू में तौले जाते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए इंसान कोई कसर नहीं छोड़ता, अपने ईमान को भी बेच सकता है। उदाहरण स्वरूप इन्होंने फिल्म सट्टा बाजार का जिक्र किया है यहां पर कि उन्होंने लिखा है कि गुलशन बाबरा ने लिखा, हेमंत कुमार का गाया हुआ गीत कुछ कह जाता है कि चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है। जी, आपकी बात भी सही है। और इसके साथ आपने एक और दूसरी फिल्म का भी यहां पर कहा है कि फिल्म पहचान में भी पैसों की पहचान, यहां इंसान की कीमत कोई नहीं, बचके निकले जा इस बस्ती में करता मोहब्बत कोई नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने लिखकर भेजा है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी इंसान परदेश तो सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए जाता है, लेकिन धीरे धीरे फासले सिर्फ शहरों के नहीं,

रिश्तों के भी हो जाते हैं। सच तो यही कि चंद सिक्के जिंदगी चला सकते हैं, मगर अपनों की आवाज, उनका साथ और उनका अपनापन किसी भी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। आपकी बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, इंसान अक्सर थोड़ी सी कमाई लालच में अपने अमूल्य पारिवारिक संबंधों, प्रेम और अपनों के साथ खुद पीछे छोड़ देता है। बेहतर भविष्य और धन कमाने की होड़ में ये व्यक्ति अपने घर आंगन को छोड़ दूसरे देश चला जाता है। त्रासदी यह है कि वह व्यक्ति अपनों के दिल की धड़कन हुआ करता था और दूर जाते ही अपनों के लिए परदेसी हो जाता है। बहुत अच्छी बातें आपने लिखी हैं, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको एक अच्छा सा गीत भी सुनवा दें। और जब हम बात इस परदेसी या परदेशी विषय पर कर रहे हैं, तो ये जो परदेश में जाते हैं, ऐसी कई सारी फिल्में हमारे जेहन में आती हैं। पुरानी फिल्मों में तो कई बार ऐसा होता है कि घर से बेटा कमाने के लिए बाहर चला जाता है। ऐसी कौन सी फिल्म आपके दिमाग में अभी आ रही है, ये प्रश्न है आपके लिए कि ऐसी कौन सी फिल्म आपके दिमाग में आ रही है जिसमें बेटा घर छोड़कर परदेश चला गया पैसे कमाने के लिए। जरा बताइएगा उस फिल्म का नाम। अगर आपके दिमाग में कोई भी फिल्म का नाम आता है तो जरूर से हमारे साथ साझा कीजिए कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपके दिमाग में अभी आ रही है कि बेटा गया है या बेटी गई है परदेश पैसे कमाने के लिए, विवाह करके नहीं, केवल पैसे कमाने के लिए बेटा या बेटी बाहर गए हैं, जरूर से बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इस गीत को लिखा किसने है। इसके गीतकार का नाम भी आप बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए सुनते हैं ये गीत।

से हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। इस फिल्म के गीतकार, इस गीत के गीतकार हैं हसरत जयपुरी। बिल्कुल सही उत्तर देने के साथ हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि ऐसी कोई फिल्म जो आपके दिमाग में, आपके जेहन में आ रही है, जो फिल्म चली गई है जिसमें बेटा या बेटी बाहर चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं अर्पण फिल्म है। जी बिल्कुल, उसमें एक और फिल्म का नाम कई लोगों ने लिया है, जो फिल्म का नाम है नाम। एक और फिल्म है नाम, फिल्म के बारे में कई सारे लोगों ने कहा है, बरसात फिल्म का जिक्र किया है कि यह बरसात फिल्म का गीत है। बिल्कुल सही जी। हमारे एक और श्रोता ने बताया कि स्वदेश फिल्म है जिसमें शाहरुख खान अपने गांव को छोड़कर जाता है। बिल्कुल सही बात है, गांव को छोड़कर जाते हैं, अपनों को छोड़कर जाते हैं, फिर वापस भी आते हैं। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने और भी कई सारी फिल्मों के नाम दिए हैं, जैसे पूरब पश्चिम, नाम, देश परदेश, ऐसी कई सारी फिल्मों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे गांव में या छोटी जगहों पर जब उन्हें पेट की भूख पूर्ति नहीं कर पाती है, उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उस समय लोग यहाँ से चले जाते हैं कहीं और। स्वदेश के बारे में फिर से जिक्र हुआ है। और जी हमारे एक श्रोता ने लिखा, उन्हें फिल्म नाम याद आ रही है जिसमें संजय दत्त पैसा कमाने के लिए भारत से बाहर चले जाते हैं और गलत हाथों में भी पड़ जाते हैं। देश परदेश में प्राण इंग्लैंड के लंदन शहर में जाते हैं। जी उनकी खोज में देवानंद भी लंदन जाते हैं। जी ऐसी कई फिल्मों के नाम आप सबने बताए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक और हमारे श्रोता बड़े अच्छे से लिख रहे हैं कि यह कड़वी सच्चाई है कि कई बार लोग रिश्तों में पैसे और भौतिक सुखों के बदले भावनात्मक जुड़ाव और सम्मान और अपनापन के लिए तरसते हैं। अक्सर ऐसा इसलिए होता है कि पैसा एक सीमा तक आराम और सुरक्षा दे सकता है, लेकिन यह प्यार, भरोसा, मानसिक शांति नहीं कर ही सकता। लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं, लेकिन रिश्तों में संवाद, अपनापन गायब हो जाने के कारण वे भीतर से अकेले पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल सही। हमारे कौश श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इंसान अक्सर थोड़ी सी कमाई और लालच के लिए अमूल्य पारिवारिक संबंधों और अपनों का साथ पीछे छोड़ देता है, धन कमाने के लिए घर आंगन छोड़ देता है, वही बात है, परदेसी हो जाता है। परंतु हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी, उन्होंने एक पद्यांश का जिक्र किया है महाकवि सूरदास की रचना का, कि उन्हें भ्रमर गीत की याद आ रही है। जी ये बहुत खूबसूरत भ्रमर गीत है, जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों से इस बात के बारे में बातें होती हैं कि कृष्ण क्या है, कैसे हैं, कहाँ हैं, तब गोपियां जब उस भ्रमर गीत में अपनी व्यथा को कहती हैं, उस व्यथा को यहां पर इन्होंने लिखा है कि कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि वदी हमसों हरि आहार चली जात। और इस बात में वह बड़े अच्छे से बता रही हैं कि उद्धव यानी उद्धव दादा उस परदेसी कृष्ण की बातें क्यों कह रहे हो जो एक बखवाड़े का बाधा कर गया था और अब तक एक महीने से अधिक बीत गए हैं और वो अभी तक आया नहीं है। तो यहां पर जब परदेश कोई चला जाता है और परदेश से वापस नहीं आता है तो वहां पर वो गया क्यों था, इसके पीछे के भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी, उन्हीं बातों में से एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, वह प्रश्न मैं आपको बस छोड़ देती हूं कि क्या हर बार एक इंसान केवल पैसे कमाने के लिए जाता है? आपके अपनों में से कितने लोग शहर से बाहर गए हैं किसी उपलब्धि के लिए या देश हित के लिए या कभी किसी और काम के लिए, बताइएगा जरूर। और इसके साथ मैं आपको अगला गीत सौंप रही हूं, ये गीत बहुत अच्छा है, बता दीजिए कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और बताइए कि आपके में से अपना कोई गया होगा, हम दूसरे पक्ष से बात कर रहे हैं, देखकर देखिए कि आपके उस ओर से कोई बाहर गया होगा, उसके जाने का कारण क्या था।

हम सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत जो कि फिल्म आवारा में आवारा से लिया गया, शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। और हमने आपसे पूछा था कि बता दीजिए इसके गाइस गीत के गायक कलाकार कौन है, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लता मंगेशकर। और हम उसमें जोड़ देते हैं उनके साथ गाया साथियों ने। चलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि अगर कोई बाहर जाता है तो आप बताइए, अगर कोई आपकी पहचान का है जो कभी बाहर गया है तो बताइए कैसा क्या हुआ। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे अपने तो बहुत लोग विदेश गए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहां रहते हुए नागरिकता मिलने के बाद घर वापस आने को तैयार नहीं है, क्या कर सकते हैं, पलायन भी जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बेटा कमाने के लिए बाहर गया था, बहुत दिनों तक विदेश में रहा, टिक नहीं सका, वापस आ गया और अब तो बहू भी जाने को तैयार नहीं है। जी अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने लिखा कि फिल्म आप लौट चले में एक लड़का विदेश जाता है, लेकिन वहां सब कुछ मिलने के बाद अंत में वापस आने के लिए मजबूर हो जाता है। जी हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से उत्तर दिए कई सारी चीज प्रश्नों के, और इन प्रश्नों में से एक प्रश्न मेरी ओर से आपके लिए आता है कि विचार करते हैं हम सब मिलकर कि जो अपना घर छोड़कर, अपना वतन छोड़कर, सीधे देश छोड़ने की बात करते हैं, जो अपना घर छोड़कर, जो अपना देश छोड़कर बाहर जाते होंगे, उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना होता होगा, जल्दी से बताइएगा कि उन्हें क्या क्या परेशानियां होती होंगी। आप ये परेशानियां हमारे साथ साझा कीजिए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, और बता दीजिए इस गीत में को हमने किस फिल्म से चुना है, यानी ये गीत किस फिल्म से है, उस फिल्म का नाम आपको बताना है। और तब तक ये भी बताइए कि जो लोग विदेश जाते हैं उन्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ता होगा, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा।

0: हम सुन रहे थे गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था ये किस फिल्म का गीत है, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, अर्पण फिल्म का यह गीत है। और हमने आपसे और भी एक बात पूछी थी कि परदेश जाकर कितनी समस्याएं होती होंगी, तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से उत्तर दिए हैं कि जब परदेश जाते हैं तो अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां जाकर सारे काम उन्हें स्वयं करने पड़ते हैं। जी, ये बात भी सही है। उसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने ये बात भी बताई कि वहां जाते हैं, वहां मिलता तो सब कुछ है लेकिन अपनापन नहीं मिलता। आपने बात तो बिल्कुल सही कही है कि अपनापन तो नहीं मिलता है। इसके साथ ही कई बार हमारे श्रोताओं ने बताया कि कई बार विदेश जाते हैं तो दूसरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह उनके देश के नहीं है, तो एक व्यक्ति अपने देश के व्यक्ति का पहले साथ देगा ना कि आपका, तो ये समस्याएं भी, कुछ इस तरह की समस्याएं भी शायद उनके जीवन में आती होंगी। ये सारी समस्याओं के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या हमें लगता है कि उनके जीवन में आती होगी, जिसके बारे में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि अपनत्व, उसने लिखा है कि उनके परिवार के लोग, बहुत से लोग परदेश में हैं लेकिन जब जब वो भारत आते हैं उनमें अपनत्व की कमी का एहसास लगता है। ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है जब लोग दूर रहते हैं ना, तो हम और वो एक ही तार पर यानी एक ही बात पर नहीं चल रहे होते हैं, तो कभी कभी जब वो बातें समझ में नहीं आती तो अपनत्व शायद कम लगने लगता होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं, हम बहुत पहले दिल्ली मुंबई नौकरी के लिए गए थे और असफल रहे, घर से 2 किलोमीटर दूर गोरखपुर में प्राइवेट नौकरी करके दिन गुजारे, हफ्ते में बार बार घर आना होता था, फिर हम परदेश के का अनुभव क्या बताएं। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब बाहर गए थे तो उन्हें सबसे ज्यादा पापा मम्मी और अपने दोस्तों के साथ पौधे पक्षियों की भी बड़ी याद आती थी, और उससे भी अधिक जिस बेटे को यहाँ छोड़कर गए थे। जी, और उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें 1 बजे की विविध भारती की गीतमाला की भी बड़ी याद आती थी। जी, अब हम उसे सुरीला सफर के रूप में आपको सुनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर बरस भारत से करीब 3 करोड़ 30 लाख लोग विदेश की यात्रा करते हैं, 2 करोड़ लोग घूमने जाते हैं, कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, कुछ काम धंधे के सिलसिले में जाते हैं। जी, हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बताया कि उनका कोई उनका भाई जो है वो बाहर पढ़ने गया था अमेरिका, और उसके बाद फिर वो वापस आ गया, कुछ कुछ कारण हुए और उन्होंने अपने जीवन में कई सारे काम किए। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इसी विषय को लेकर कि जब जो परदेशी होता है उसकी जिंदगी जो दो दुनिया जो है वो दो में बटी रहती है, एक दुनिया वहां जहां वह अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा होता है और दूसरा जहां वह लौट कर आना चाहता है। हर त्योहार, हर खुशी, हर दुख में सबसे ज्यादा अपने घर की कमी महसूस होती है। उसे मालूम है कि मेहनत से किसी अपने की आंखों में खुशी आएगी और परदेशी शरीर से भले दूर हो जाए लेकिन उसका मन हमेशा अपने गांव, अपने शहर, अपने लोगों के बीच में रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब परदेश जाने वालों की तो बहुत सारी बातें हमने कर ली और परदेश जाने वालों की समस्याओं के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अभी हमको ये बता दीजिए कि अगला जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उस गाने को संगीतबद्ध किसने किया, यानी संगीतकार कौन है। पर इसके साथ एक बात और बताइए कि अगर आपको कभी मौका मिलता, कभी एक चांस मिले, एक मौका मिले अपने देश से बाहर जाने का, वापस आने का भी चांस है, यानी आप बाहर जा रहे हैं तो आप वापस भी आएंगे कुछ ही दिनों में, कुछ दिनों के लिए परदेशी होने का मौका मिले, तो आप अपने देश से कहां जाना चाहेंगे, किस जगह पर घूमने जाना चाहेंगे या किस जगह पर जाकर।
1: आकाशवाणी मुंबई

0: एकदा ठळक बातम्या. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्ष सदस्यांच्या गोंधळामुळे दोन्ही सभागृहांचं कामकाज 2 वाजेपर्यंत स्थगित. सीजेपीच्या संसद मार्चच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीत कडक सुरक्षा व्यवस्था. राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरणात विशेष तपास पथकाने स्थिती अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सुपूर्द केला. इराण आणि अमेरिकेचे सलग 9व्या दिवशी परस्परांवर हल्ले. आणि महाराष्ट्रात 2 वेगवेगळ्या अपघातात 6 जणांचा मृत्यू 7 जण जखमी. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया 3 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: जरूर से इसका उत्तर दीजिएगा. और बहुत खूबसूरत सा बात है कि हमारे श्रोता बता रहे हैं कि वो जब विदेश, वो शाकाहारी हैं विदेश, क्या उन्हें भारत में भी दिक्कत आती है कई बार. अच्छा, अब हम विदेश को छोड़कर जब हम अपने ही देश में आते हैं और अपने गांव को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो जाने के लिए या आप कभी उस जगह पर काम करने के लिए गए होंगे तो कई सारी चीजें भी तो नई नई मिलती है ना. कई सारे रिश्ते मिलते हैं, कई सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं, उन सब संस्कृतियों के साथ भी जुड़ जाते हैं. और जो विदेश जाकर रहते हैं वो लोग भी अपने जीवन में बड़ी अलग तरीके से अपनी एक दुनिया सजाते हैं. हाँ, रिश्ते जो अपने रक्त के हैं ये अपने हैं, वो छूट भी जाते हैं. तो जल्दी से बताइएगा कि कभी कोई ऐसा मजबूत रिश्ता आपका छूटा है जो आपको छोड़कर कभी चला गया.

हम सुन रहे थे माचिस फिल्म का ये गीत हरिहरन सुरेश वाडकर विनोद सहगल और केके की आवाज में गुलजार के बोल और विशाल के संगीत के साथ। हमने आपसे प्रश्न पूछा कि भारत के पढ़े लिखे बच्चे जब विदेश जाते हैं तो लाभ होता है हानि होता है, जो भी आपके मन में विचार है वो आप अवश्य रखें। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से उत्तर दिए हैं कि कई बार विदेशों में गए बच्चे के माँ बाप इतने अकेले हो जाते हैं कि मृत्यु पर अगल बगल के पड़ोसियों को भी पता नहीं चलता, और जब तक 3-4 दिन बाद फोन करे तब पता पड़ता है, और कई बार वीजा आदि की समस्याओं के कारण भी कई सारी चीजें होती हैं। हमारे एक और श्रोता लिखता है, रिश्ता कैसा भी हो दर्द बड़ा सहनीय होता है, उसे भूलना बड़ा कठिन है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कि हमें दूर जाना भी होता है, दूर जाकर भी दिल तो उस इंसान से जुड़ा ही रहता है, क्योंकि रिश्ते कांच के नहीं होते जो टूट जाएं, दिल से जुड़े होते हैं। कितनी सकारात्मक बात आपने कही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शिक्षित बच्चे विदेश जाकर नौकरी करते हैं, वहां की उपलब्धियों से उनका हुनर दिखाई देता है, राष्ट्र और मजबूत होता है, पर अपने देश में केवल नाम की प्रसिद्धि मिलती है, लाभ कुछ नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने देश में जब काम करते हैं तब आपको लाभ बहुत मिलता है, यहाँ पर रहकर भी कई सारे बच्चों ने बहुत कुछ कमाया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो जगदलपुर गए थे बस्तर, वहाँ का कल्चर, वहाँ का चित्रकूट जलप्रपात, हरे भरे जंगल, हरियाली उनको आज भी याद है, मन मचल जाता है। हाँ, बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ा आनंद आता है जगह पर, वो बड़ा अपनापन भी है लोगों में। वैसे भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं हर जगह प्रेम ही मिलता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल विदेश जाने वाले विद्यार्थी वापस आते तो अपने साथ अंग्रेजी मैम लेकर आते हैं। नहीं, ऐसा सभी नहीं करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब हमारे देश के बुद्धिजीवी जब उसी ज्ञान को प्रदेश में जाकर सेवाएं देते हैं तो कभी कभी गर्व होता है, उससे अधिक दुख भी होता है कि इसी ज्ञान को भारत माँ को समर्पित करते तो करोड़ों लोग लाभान्वित होते। मैं कई बच्चों को जानती हूँ जो 5-6 साल बाद वापस आ गए, क्योंकि वहाँ उन्हें अपनापन और अपने देश की हर बात याद आती थी, इसलिए वो वापस आ गए। कितने अच्छे बच्चे हैं जो अपने देश के लिए वापस आ गए। इसके साथ उन्होंने, हमारे श्रोता लिखते हैं, अपने बच्चों को कहा कि कम कमा कर भी अपने देश में रहकर तरक्की करने की सलाह दी गई है। हमारे श्रोता ने लिखा, भारत का बच्चा विदेश क्यों जाए, इस देश में अपार संभावनाएं हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं, जब हमारे देश के बच्चे विदेश जाते हैं तो देश को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, इससे विदेशी मुद्रा रेमिटेंस की प्राप्ति होती है, तकनीकी एवं ज्ञान का हस्तांतरण और वैश्विक मंच से देश की शाख बढ़ती है, जिससे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव मजबूत होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोताओं ने, एक ने और वही विवाह वाली बात को कहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब, जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है। मैं जब विद्यालय में पढ़ा करती थी तब मेरे शिक्षक ने एक बात बहुत अच्छी सिखाई थी कि जब आप विदेश जाते हैं तो एक काम करिए, आप विदेश जाइए लेकिन विदेश जाकर वहाँ कुछ रोज रहकर वापस आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो आप सीख कर आएंगे, देख कर आएंगे, वो अपने देश में अगर लगाएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा, और वो भारत में आकर उस चीज़ को लगाएगा तो भारत की साख और बढ़ जाएगी। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, आप भी अपने लोगों को बता सकते हैं। हमारे लोग लिखते हैं कि पहले लोग अपने प्रदेश से दूसरे राज्य में कमाने जाते थे तो उन्हें परदेश कहा जाता था, और

ऐसा उन्होंने बताया। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं उनकी भाई की कई ट्रांसफर कई जगह होती है, कई सारी संस्कृति से वो शिक्षा भी लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बहुत सारी बातें हैं कि अलग अलग वर्गों में अलग अलग लोग बाहर जाते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो हम उनसे बस यही बात कह सकते हैं कि आप चले तो गए हैं लेकिन आपका देश आपसे बहुत प्यार करता है। इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बताइए।

हम सुन रहे थे ये गीत आप लौट चलें, और हमने आपसे पूछा इसके गायक कलाकारों के बारे में, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, उदित नारायण और अलका याग्निक इस गीत के गायक कलाकार हैं। हमारे श्रोता जो हैं उन्होंने एक बड़ी दिल को कचोटने वाली बात या कहें हृदय से रोने वाली बात लिख दी है, जहां पर सच में हर किसी का हृदय द्रवित हो जाएगा। वो लिखते हैं कि जब पहली बार बेटा विदेश जाता है तो माँ का कलेजा मुँह में आ जाता है और माँ को बहुत घबराहट होती है, होती ही होगी ना, अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर भेजने में। हमारे श्रोताओं ने कई चीजें बताई हैं विदेश जाने पर, कि विदेश चले जाते हैं, परिवार दूर हो जाता है, पर कई बार उस ओर से देखें तो उनकी भी मजबूरी होगी जो उन्हें जाना पड़ा, अपने घर को छोड़कर कोई नहीं जाना पड़ता, पर कई बार रोटी उन्हें दूर खींच ले जाती है और कई बार तो वापस आने का रास्ता भी नहीं मिलता। और ऐसे समय में हम और आपने जो चिट्ठियां लिखी होती हैं, उन्हें संदेश भेजे होते हैं, उन्हें प्यार भेजा होता है, वो उनका साथ देता है। हमारे श्रोता बताते हैं उन्होंने ये फिल्म करतारपुर सनम सिनेमा में देखी हुई थी। हमारे श्रोता बताते हैं कि वो नेपाल घूमने जाते थे और दोस्तों को कहते थे कि विदेश गए हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, घूमने तो गए हैं। तो चलिए एक काम कीजिए, जितने लोग आपसे दूर रहते हैं या जो लोग दूर रहते हैं, दोनों आपस में चिट्ठियां जरूर भेजिए, व्हाट्सएप मैसेज, वीडियो कॉल, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन चिट्ठियां एक बार नहीं कई सौ बार एक दूसरे की याद, एक दूसरे के प्यार में डुबो देती हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गीत और बताइएगा ये गीत गाया किसने है।

0: चिट्ठी आई।
1: और इसी के साथ हमारे घर श्रोता ने एक चिट्ठी लिखी है छोटी सी, और वो चिट्ठी ऐसी है कि देसी बायना सब जग मीठा। यह विद्यापति जी ने कहा है, बिल्कुल अपना देश जहां है, जहां की मिट्टी वहां से खान पान, वहां से गोली, और वहां अपनापन दुनिया की सारी सुख समृद्धियों से ऊपर है। पर दुनिया कहीं भी बहुत सुख समृद्धि हो, सोने चांदी के पलंग बिछावन है, पर हमें तो अपने भारत की खटिया ही बहुत प्यारा है। जी धन्यवाद। और हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत, पंकज उदास और साथियों ने इसे गाया। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ आज का सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। सदा सुखी रहिए। नमस्कार, प्रणाम।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं जो इंसान भीतर से मजबूत होता है उसे हर बात पर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि हर बहस जीतना सफलता नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात कहना ही असली समझदारी है। कुछ लोग हालात के आगे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और कुछ आखिरी दम तक मुकाबला करते रहते हैं। इंसान अगर अपने दिल और दिमाग पर नियंत्रण कर ले तो वो अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचा मुकाम भी हासिल कर सकता है, लेकिन अगर वो जीवन में मिलने वाली असफलताओं को ही अपनी नियति मान ले तो वो निराशा की ऐसी खाई में गिर सकता है जहां से बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, बहुत मजबूत होता है वो इंसान।

मजबूत इंसान बनने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर काम करना बेहद जरूरी है। खुद को अनुशासित रखें, चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर माने। कठिन समय में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही असल मजबूती है। भीतर से मजबूत और निडर बनने के लिए चुनौतियों से हमें डरना नहीं बल्कि चुनौतियों का डटकर सामना करना आना चाहिए और यही जीवन के लिए बेहद जरूरी भी है। कुछ

महान विचारकों और दार्शनिकों के अनुसार मानसिक मजबूती और दर्द सहने की क्षमता का विकास केवल परिस्थितियों से भागने में नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करने में है। आंतरिक दृष्टि से मजबूत व्यक्ति अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्पष्ट रूप

से जानते हैं और खुद को अंधेरे में नहीं रखते। साथ ही ये भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपने मूल्यों और नैतिकता के अनुसार सही राह पर चलते हैं। भीतर से मजबूत और दृढ़ व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, ऐसे मजबूत लोग शिकायत करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

0: दोपहर के 2:15 होने को हैं। बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू, विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून

0: सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the house to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the house.
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र

0: के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुटको पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440 करोड़ 42 लाख रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान

0: पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
1: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले 2 दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे ये गीत आज और कल फिल्म से आशा भोसले की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में एक और गीत जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर ने, नूर देवासी ने इसे लिखा है, विपिन ने इसे संगीतबद्ध किया है। बागी शहजादा फिल्म से ये गीत है।

0: ये गीत हमने सुना गुमराह फिल्म से महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: ओ तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है फिल्म दिल ही तो है से। आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और रोशन का है संगीत।

सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव।

0: यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत से सजा हुआ यह गीत, जिसे जो कि है फिल्म मेरे महबूब से।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सही परांजपी।

0: उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनिए,
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, ब्लफ मास्टर फिल्म से मुकेश की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: ना नई आफत आ जाती, लेकिन अब किसी काम से उसे दिलचस्पी न थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसे दिली ताल्लुक हो गया था, जिनके सफाई और सजावट में वो मुनहमिक रहा करती थी, उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखती। घर में एक खिदमतगार था, उसने देखा कि बहूजी खुद घर की तरफ से लापरवाह है तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। दोनों बच्चे भी मां से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साए से भी भागते थे। जो भी कुछ उनके सामने आ जाता जहर मार कर लेते, दफ्तर चले जाते, दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेकर कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ बोलते रूह फना होती थी, वहां उनकी तफ्तीश जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन बाद जमाने से मसालहत कर ली थी और उस वक्त से झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने उसे अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई, उमानाथ पर बेहद गुस्सा आया।
1: क्या करते हैं आप, उन्हें यहां लाकर क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। अब इस हालत में देखकर गुरु सेवक ने दिल में क्या समझा होगा हम लोगों को, मगर आपको अकल आई ही कब थी? मैं अपना पर्दा ढांकते फिरती हूं और आप उसे खोलते फिरते हैं, जरा भी शर्म नहीं। जैसे बेहयाई का जामा पहन लिया आपने तो, खामख्वाह मुझे जलील करते रहते हैं बस।
0: दुआ देकर आफियत पूछी और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा,
2: आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं इनकी दावत पे तो ना आता, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारी दीदी का सख्त तकाजा है तो वक्त निकालना पड़ा।
0: रूप कुमारी ने बात बनाई।
1: हाँ, वो तुमसे उस दिन रवा रवि में मुलाकात हुई, देखने को जी लगा हुआ था।
2: जी
1: जी,
0: गुरु सेवक ने दरो दीवार पर नजर डाली और कहा,
2: ये घर दीदी, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी, हैं?
0: रूप कुमारी को अब मालूम हुआ कि यह कितना बदमजाक है, दूसरों के जज्बात की उससे बिल्कुल परवाह नहीं। ये इतनी सी बात भी नहीं समझता कि दुनिया में सभी तकदीर वाले नहीं होते, लाखों में कहीं एक ऐसा भगवान निकलता है। किसी कदर तुर्श होकर बोली,
1: पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में मासूम चिड़िया रहती हैं, कटघरे तो दरिंदों का मस्कन होता है।
0: गुरु सेवक किनाया न समझ सका, बोला,
2: मुझे तो इस घर में, ऐसे घर में हफ्स हो जाएगी, दम घुट जाए। मैं आपके लिए दीदी, मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर तय कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, और आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। हाँ, सुन रहे हैं दीदी, मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी तो उन्हीं के मकान में रहता हूं, सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों, सब मेरी इख्तियार में है, मेरी इख्तियार में, सुन रहे हैं आप दीदी?
1: सुन रही।
2: जिसको जो मकान चाहूं दे दूं, सब मेरे इख्तियार में है, किराया लूं या ना लूं। अब मैं आपके लिए अच्छा सा मकान ठीक कर दूंगा दीदी, जो सबसे अच्छा है। मैं आपका बहुत अदब करता हूं, मैं बहुत अदब करता हूं आपका, आप मेरी दीदी है। हाँ,
0: रूप कुमारी समझ गई हजरत इस वक्त नशे में है, जब ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उनकी आंखें सिकुड़ गई हैं, रुखसार कुछ फूल गए हैं, जबान में हल्की सी लग्जिश थी जो हर लम्हा नुमाया होती जाती थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा और बेगैरत बन गया था, जिसे कुछ देखकर नफरत होती थी। उसने एक लम्हा बाद फिर बहकना शुरू किया,
2: दीदी आपके लिए मेरी जान हाजिर है, दीदी आपके लिए मकान का इंतजाम करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूं। कौन हूं? मुख्तार। सब कुछ मेरे इख्तियार में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता

0: वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती है, मुझे अपना बेटा समझती है। क्या बेटा? बेटा समझती है मुझे। मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूं। आपको बताता हूं, मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए का नौकर रखा था। कितना? 20 रुपए का। बड़ा मालदार आदमी था, मगर ये किसी को मालूम न था कि उसकी दौलत कहां से आती थी। मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं था, किसी को नहीं, कोई नहीं जानता था। वो खुफिया फरोश है, किसी से कहना नहीं दीदी, किसी से कहना नहीं। वो खुफिया फरोश था, कोकेन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। मैं भी अब वही काम करता हूं, हर शहर में हमारे एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में यकता कर दिया। जी हां, मजाल है कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं, कोई चू नहीं कर सकता। हिसाब में लिखता हूं 1,000, देता हूं 500, बाकी यारों का है। बेदरेग रुपये आते हैं, बेदरेग खर्च करता हूं। और वो बुढ़िया, बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, साधु संतों की सेवा में लगी रहती है, और बंदा चैन करता है, जितना चाहूं खर्च करूं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। दीदी 1 मिनट, ये
1: क्या है?
0: थोड़े से रुपए।
1: ये थोड़े से रुपए नहीं है, ये तो पूरा नोटों का बंडल है। कि इतने रुपए?
0: दीदी क्या? ये आपके कदमों का सदका है, मुझे दुआ दीजिए। जो ईमान और उसूल के उपासक हैं, उन्हें दौलत लात मारती है। दौलत तो उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन ईमान सब कुछ निसार करने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, जितने दौलतमंद हैं सब लुटेरे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है कि ये दौलत मुझे कहां से मिली? किसी को भी देख ली, जो है सो अपने फन में माहिर है, काम इतना सा करते हैं, पैसा इतना सारा बना लेते हैं। अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है ना दीदी? जायज है ना? जी हां, जरूरतमंदों को लूटकर मालदार हो जाना हमारी सोसाइटी का पुराना दस्तूर है। और दीदी, मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं, और मेरी जिंदगी का मकसद है ऐश करना। मैं भी ऐश करूंगा दीदी, मैं भी लूटूंगा, समझे ना? ऐश करूंगा और खैरात करूंगा। कहिए तो गिनवा दूं, यहां कितने लोग जुआ खेलकर करोड़पति हो गए, न जाने कैसे कैसे गलत काम करके करोड़पति हो गए लोग दीदी। अब मैं भी तो वही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? मैं भी ऐश करूंगा, लूटूंगा, मैं भी ऐश करूंगा, खैरात भी करूंगा।
2: उमानाथ ने आगे कहा, अरे मिस्टर गुरुसेवक, क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक उठा, पैर लड़खड़ाए,

0: और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा, झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। यहां बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो तरगीबें कई दिन से अच्छे अच्छे दिल आवेज रूप भर कर उसके सामने आ रही थी, आज उसे उनकी असली मकरूह घिनावनी सूरत नजर आई। जिस सादगी खुलूस और इसार की फिजा में अब तक जिंदगी गुजर रही थी, उसमें हरामकारी और आबला फरेबी का गुजरना था। इन दामों में वो दुनिया की सारी दौलत और सारे ऐश भी खरीदने को आमादा न हो सकती थी। अब वो रामदुलारी की तकदीर से अपनी तकदीर का बदला न करेगी। वो अपने हाल में खुश है। रामदुलारी पर उसे रहम आया जो नमूद और नुमाइश के लिए अपने जमीर का खून कर रही है। मगर एक ही लम्हा में गुरु सेवक की तरफ से उसका दिल नर्म पड़ गया।
1: जिस सोसाइटी में दौलत पुछती है, जहां इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट और शानो शौकत से आंकी जाती है, जहां कदम कदम पर तरगीबों का जाल बिछा हुआ है और सोसाइटी का निजाम इतना बेढंगा है कि इंसान की हद, गजब और फिरोमायगी के जज्बात को उकसाता रहता है, वहां गुरु सेवक अगर रौ में बह जाए तो ताज्जुब का मुकाम नहीं।
0: उस वक्त उमानाथ ने आकर कहा,
2: सुनो, यहां बैठा बैठा क्या बक रहा था भाई? मैंने तो उसे रुखसत कर दिया। जी डरता था कहीं उसके पीछे पुलिस ना लगी हो, कहीं मैं नाकर्दा गुनाह में पकड़ा ना जाऊं।
0: रूप कुमारी ने उसकी तरफ माजरत ख्वाहाना नजर से देख कर जवाब दिया,
1: वही अपनी खुफिया फरोशी का जिक्र कर रहा था।
2: मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने की दावत दे गया है, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए।
1: जी नहीं, आप क्लर्की किए जाइए, इसी में आपकी खैरियत है।
2: मगर क्लर्की में ऐश कहां, क्यों ना साल भर की रुखसत लेकर जरा उधर का भी लुफ्त उठाऊं।
1: लेकिन मुझे अब वो हवस नहीं रही।
2: मगर एक बात तो है।
1: क्या?
2: मैं तुमसे आकर ये किस्सा कहता तो तुम्हें यकीन ना आता।
1: हां, यकीन तो ना आता, और मैं तो कयास भी नहीं कर सकती कि अपने फायदे के लिए कोई आदमी दुनिया को जहर खिला सकता है।
2: मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब पिला दी, नशे में बहकने लगा और सब कुछ खुद ब खुद कबूल कर लिया।
1: वैसे ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी।
2: हाँ, ललचाई तो है, मगर ऐप करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है ना, वो कहां से लाऊंगा।
1: ईश्वर ना करे कि वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है, मालूम नहीं रास्ते में उस पर क्या गुजर है।
2: नहीं, वो तो अपनी कार पर थे।
0: रूप कुमारी एक मिनट तक जमीन की तरफ देखती रही, फिर बोली,
1: सुनो, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो अभी। हां, ले चलो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है, उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाकर बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। मुझे डुलारी के घर पहुंचा दो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं।
3: कथा सुधा में आपने सुना मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने की तीसरी और अंतिम कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है, रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी ममता सिंह, उमानाथ अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। अगले हफ्ते कथा सुधा में एक नई कहानी के साथ हाजिर हो जाएंगे।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और अब हम बात करेंगे मौसम से जुड़ी यानी बारिश की कुछ बातें। बारिश के पानी की बचत क्यों जरूरी है, क्यों करनी चाहिए, और अगर हम बात करें कि संदेश हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं तो आज एक बड़ा अच्छा संदेश मैंने पढ़ा। किसी श्रोता ने लिखा है कि आज विषय बहुत कम है, शायद विषयों की कुछ कमी पड़ गई है, इस तरह से हमारे श्रोता ने लिखा है।
1: अच्छा,
0: तो उनकी बात का जवाब सिर्फ मैं इतना देना चाहूंगी कि विषयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोमवार का दिन है और आज के दिन होता है कथा सुधा, जो कि एक बड़ा विषय है जो समय बहुत ज्यादा लेता है। किसी भी कहानी को सुनने के लिए 15-17-18 इतने मिनट का समय लग जाता है और इस दौरान अगर हम बहुत सारे विषय ले लेंगे तो उस विषय के साथ न्याय नहीं हो पाता, उस पर पूरी चर्चा नहीं हो पाती। फिर हमारे श्रोता जो संदेश भेजते हैं हमें बड़े प्यार से, उन संदेशों को भी हम सबको शामिल नहीं कर पाते, जबकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे श्रोता जो हमें संदेश लिखकर भेज रहे हैं उनमें से ज्यादा संदेश उनके हम पढ़कर आप सब तक पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए कथा सुधा का दिन था तो हमने विषय थोड़े कम चुने।
1: बिल्कुल, तुमने सही बात कही है, सबको समझ में भी आ गया होगा कि क्या वजह है ना, तुमने रिप्लाई दे दिया। तो चंचल, बारिश का पानी प्रकृति का सबसे शुद्ध और मुफ्त उपहार है। बारिश का पानी जो है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। तभी तो इस दौरान सब तरफ हरियाली छा जाती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है और बारिश के दौरान नदियां, नहर, बांध, कुएं, तालाब, बावड़ियां, झील और सागर, ये सब ऐसे जलाशय हैं जिनमें पानी खूब भर जाता है। वर्ष भर इनमें से पानी उपलब्ध रहता है। वर्षा का जल हमारी प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि संपूर्ण जीवन और पर्यावरण के लिए अमूल्य है।
0: और जैसा आपने शुरुआत में कहा ना कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हमने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ झरनों का जो पानी है वो बोतलों में भरकर लेकर आते हैं और इस तरह का पानी आजकल तो बाजारों में बिकने भी लगा है, जो कि नेचुरल पानी होता है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, क्योंकि वर्षा के पानी की और हमें पूरे साल भर इस जल को चलाना है। तो इसीलिए इसकी एक एक बूंद को बचाना बहुत जरूरी है और इसे इकट्ठा करने के या बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। और पीने के पानी के लिए बात करें फिल्टर करने की और शुद्धिकरण की, तो वर्षा के पानी को भी पीने लायक बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, और घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में भी लाते हैं, जैसे कपड़े धोने हुए, बर्तन साफ करना, फर्श की सफाई और शौचालय में भी उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई के लिए जैसे खेतों, बगीचों और किचन गार्डन की सिंचाई में बारिश का जल बहुत उपयोगी होता है।
0: और मंजरी, मुझे याद है बहुत सारे जो बड़े बड़े कपड़े होते थे, दरियां होती थी जिन्हें हम आमतौर पर धो नहीं पाते हैं, तो छतों पर बारिश के दिनों में उनको रख दिया जाता था और फिर महिलाएं उन्हीं पर थोड़ा सा ब्रश चला के उन्हें साफ करके, तो इस तरह से भी वर्षा के जल का उपयोग करते थे।
1: बिल्कुल, साथ में वो लोग खुद भी नहा के आनंद भी ले लेती थी,
0: बारिश में भीगने का आनंद भी मिल जाता था। और ऐसे कपड़े जिन्हें हाथ से धोना जल्दी से संभव नहीं हो पाता,
1: आज भी चंचल हम लोग यही करते हैं कि जब कभी बारिश होने लगती है ना तो डोरमेट सारे बाहर डाल देते हैं कि जल्दी से पानी से धार से पड़ के उनकी धूल निकल जाए, तो इसका एक फायदा मिल जाता है। और चंचल, पशु पक्षियों के लिए वर्षा जल उनके पीने के पानी की जो है वो उसकी मात्रा मिल जाती है उन्हें और साफ सफाई के काम भी आता है। उद्योगों में शुद्ध किए गए वर्षा जल का उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं में करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा जल हरियाली बढ़ाता है, मिट्टी की नमी बनाए रखता है और जैव विविधता को सहारा देता है।
0: बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना, खासतौर पर हम जंगलों की बात करें जहां पानी डालने पौधों में कोई भी नहीं जाता, तो ये जो बारिश का पानी है ये साल भर तक मिट्टी में जो नमी बन जाती है उससे उसी से वो जो पेड़ पौधे हैं वो साल भर तक हरे हरे रहते हैं।
1: हमने अपने सामने भी देखा है कि मुरझाया सूखा पौधा भी हरा हरा हो गया, पत्तियां निकल आई, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि लगता है बारिश इन लोग के लिए एक मुफ्त उपहार है। और आग बुझाने और आपातकालीन उपयोग, संग्रहित वर्षा का जल जो है उपयोग आता है, इन आपात स्थितियों में किया जा सकता है। घर के आंगन या बगीचे में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं जिससे पानी जमीन में समा सके। सीमेंट की जगह जहां संभव हो मिट्टी या इंटरलॉकिंग पक्की सतह रखें ताकि वर्षा का पानी जमीन में जा सके।
0: और बहुत सारे तरीके हैं मंजरी की हम बारिश के पानी को बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, और बहुत सारे जो बड़े सोसाइटी हैं महानगरों में जो बड़ी बिल्डिंग है वहां पर रेन हार्वेस्टिंग प्लांट लगाए जाते हैं। स्कूल, कार्यालय, किसी भी बिल्डिंग की छत पर गिरने वाला जो पानी है उसको इकट्ठा करके जमीन के अंदर तक पहुंचा दिया, तो बहुत बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं और ये पानी इतनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है कि उस सोसाइटी में, उस बिल्डिंग में साल भर भी आपूर्ति दे देता है।
1: बिल्कुल, और इसमें छत पर गिरते पानी को पाइप के माध्यम से नीचे लाया जाता है और फर्स्ट

0: फ्लश सिस्टम से गंदे पानी को अलग निकाल दिया जाता है, जिससे धूल, मिट्टी और पत्तियां टैंक में ना जाएं। फिल्टर यूनिट के द्वारा बजरी और चारकोल डालकर पानी साफ किया जाता है और भंडारण टैंक में साफ पानी जमा कर लिया जाता है।
1: और इसका दूसरा तरीका एक ये भी है कि रिचार्ज पिट, इसमें पानी को जमीन में उतारना होता है और इसमें घर या किसी भी भवन जो है, इमारत जो है, उसके पास 3 से 6 फीट का गड्ढा बनाया जाता है। उसमें ईंट, गिट्टी और फिर रेत भरी जाती है। पानी को पाइप से इसमें गिराया जाता है और इस तरह से भूजल स्तर जो है वो बढ़ जाता है।
0: और इसके साथ साथ एक सोक पिट यानी सोखता गड्ढा भी तैयार करना एक साधन है कि रिचार्ज कुओं, हैंडपंपों या बोरवेल के माध्यम से भूजल स्तर बढ़ाना, खेतों में तालाब बनाकर पानी संचित करना भी एक जरिया है और गाँव में चेक डैम और छोटे बांध बनाना तालाब, झील और पोखरों का संरक्षण एवं गहरीकरण करना होता है।
1: तो इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है हम गीत भी सुनते हुए चले आगे बढ़े।

0: गीत बड़ा सुंदर सुनवाया, लेकिन हम बात कर रहे थे ना बारिश की, बारिश आ चुकी है और कमेंट्स भी आ चुके हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब हम कॉलेज में थे तब हमारी केमिस्ट्री टीचर वर्षा होने पर लैब में रखी हुई कांच की बड़ी बोतलें और बड़े प्लास्टिक के ड्रम हमसे रखवाती थी ताकि गिरते हुए पानी को इकट्ठा किया जा सके। बाद में हम इस एकत्रित पानी का उपयोग प्रयोगशाला में किया करते थे, क्योंकि यह जल प्राकृतिक रूप से वाष्पीकरण और संघनन द्वारा डिसिल्ट होकर बरसता है, इसीलिए जमीन पर गिरने से पहले की पूरी तरह स्वच्छ और मृदु यानी कि सॉफ्ट होता है।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं, चंचल, बारिश के पानी को बचाने का महत्व, ये गर्मी में पानी की कमी से राहत देता है और इससे जो भूमिगत जल है उसका स्तर सुधरता है, कण में जो जल और उसका स्थल सुधरता है, इसको आप निम्नलिखित तरीकों से बचा सकते हैं। जो आपकी छत में पानी गिर रहा है बारिश का, वहां पर पाइप लगा दे, वो पानी पाइप में जमा हो जाएगा और इसको आप संचय कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों के लिए उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। आंगनों में भी आपके जो बरसात का पानी गिरता है उसको भी आप आंगन से संरक्षण कर सकते हैं, यानी बाल्टी ड्रम वगैरह रख के आप कर सकते हैं। और इसी
0: एक अन्य संदेश है कि कल बचाना है तो जल बचाना है, बारिश एक वरदान की तरह है, बस हमें इसके पानी का प्रबंधन कैसे करना है इस बात को सीखना होगा। प्रकृति किसी से कुछ लेती नहीं, बस देती है, उसी ने हमें जीवन दिया और जिंदा रहने के साधन भी दिए, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और जिंदा रहने के लिए जरूरी मीठा पानी, यानी ये वो पानी है जो हमें जिंदा रखता है। बाकी खारा पानी तो अथाह भरा पड़ा, यानी कि समंदर की बात कर रहे हैं कि भू जल स्तर पर, यानी कि पृथ्वी पर कितना पानी है, लेकिन इसे पीने लायक बनाना बहुत ही सीमित है। शायद इसीलिए बारिश आती है और पानी के भंडारण के लिए सूरज की गर्मी खींच ले जाती है, वहीं पानी प्रकृति पानी के रूप में प्रकृति से वापस लौटा देती है।
1: क्या बात है।
0: और कटे हुए टीडीएस की तरह उस पानी को हमें सहेज कर उसका उपाय करना चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छी से बात लिखी है। और एक इसी तरह चंचल हमारे साथी और लिखते हैं कि बारिश के पानी की बचत ही असल में अपने कल की सुरक्षा है, क्योंकि धरती पर जितना पानी है वो सीमित है और हर बूंद अनमोल है। प्रकृति हमें मुफ्त में बारिश का उपहार देती है, अगर हम इसे छतों पर और सड़कों से बहाकर नालियों में बहा देंगे तो सूखे को खुद बुलावा देंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोखता गड्ढे और पेड़ लगाकर हम उस पानी को धरती में उतार सकते हैं, जिससे भूजल बढ़ेगा, बाढ़ रुकेगी और आने वाली पीढ़ियों की प्यास भी मिटेगी। याद रखो, बूंद बूंद से ही सागर बनता है और बूंद बूंद बचाने से ही जीवन बचता है। मैंने अपने घर के बगीचे में एक गड्ढा बना रखा है जिसमें बारिश से छत के पानी का अधिकांश भाग उसी में समा जाता है। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं ने दी है।
0: यानी कि ये तो हुई पानी की बचत की बात, लेकिन वो जो पानी गड्ढों में भरा रह जाता है, जो मच्छर पैदा करता है, वो पानी आपको भरने नहीं देना है। ये जो पानी हम संचय की बात कर रहे हैं, ये वो पानी का भराव है जो हमें आगे तक काम देगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अलग चीज है और गड्ढों में पानी जमा हो जाना, उस पानी का ना सूखना, जो बीमारियां जिससे बनपती है, वो एक अलग चीज। तो दोनों ही बातों को ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि कथा सुधा और पंजाब के व्यंजन सुनने की उत्सुकता है। बारिश का पानी बचाने के लिए हमारे सोसाइटी में छत पर जमा हुआ पानी पाइप डालकर आसपास के जमीन में छोड़ दिया है। भूजल वृद्धि से सोसाइटी के बोरवेल अच्छे से भरी रहती है, सोसाइटी की बगिया खिली रहती है। बारिश के पानी की बचत कैसे करें, इस विषय पर हम सोसाइटी के बच्चों का वर्कशॉप लेते हैं, कथा कविता और प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें भी अच्छा से सतर्क करवाते हैं, यानी उनको भी जानकारी दिलवाते हैं। बहुत अच्छी सी बात आपने लिखी है
0: और सही बात है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमें ये बात सिखानी है, क्योंकि हम तो आज हैं नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए पानी का स्तर कम ना हो और एक एक बूंद, मतलब जो बोतल है वो खरीद कर हमें लेनी पड़ेगी और तब हमें कीमत समझ में आएगी, तो उस नौबत तक हम पहुंचे ही ना अगर हम ही हमें आज ही से ही इस पानी का अगर संचय करना शुरू करेंगे।
1: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं, बारिश के पानी की बचत करना चाहिए। पहले देखती थी कि बारिश का हुआ तो घर के आंगन में एक दो खाली बर्तन, बाल्टियां और बड़े बड़े बर्तन रख दिया करते थे और उसमें बारिश का पानी जो इकट्ठा करते थे वो कपड़े धोने के काम आता था। दादी उसे साफ बोतल में भर के रख देती थी और उससे अपनी आंखें धोती थी। तो भाई ये जानकारी तो आपने उनके अनुभव से लिखी है, तो इसको हम कह सकते कि भाई आप इस पर अपना है, मेरा सुन के ना अपना, जो उन्होंने लिखा है वो अपनी यादें लिखी हैं।
0: और जल संचय अभियान लिखते हुए हमारे एक साथी ने लिखा है कि 1986 और 87 की ये बात कर रहे हैं, गुजरात के

सौराष्ट्र विस्तार में बारिश बहुत ही कम बरसी थी, तब अकाल जैसी परिस्थिति हो गई थी वहां पर। और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खेतों में पानी संचय करने का अभियान चलाया गया, जिसे ढलान वाली जगह पर खेतों में के गोल किनारे या चौरस खुदाई करके कुंडी बनाकर बरसात के पानी का भरना, बाद में जब पानी जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो ऊपर सीमेंट के पाइप द्वारा उनमें पाइप डाले जाते हैं कुएं की तरह, और इस तरह से उस पानी को काम में लिया जाता है। उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी लेकर भेजी है। चलिए अब गीत सुन लें।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।

0: संगीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
1: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है, उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
1: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
5: तो चंचल अब हम लोग बातें करेंगे खाने पीने की, व्यंजन की बात करेंगे।
6: की। तो पिन्नी जो है ना, पंजाब का जो व्यंजन है, ये पारंपरिक रूप से उड़द दाल की बनाई जाती है। वैसे लोग इसे आटा, मैदा, किसी अन्य आटे से भी बनाते हैं, लेकिन उड़द दाल की पिन्नी किस तरह बनाई जाती है, इसकी बड़ी एक अच्छी सी रेसिपी हमें मिली है, हमारे श्रोता की तरफ से ही मिली है। तो हम बता दें, इसके लिए हमें सामग्री चाहिए: धुली उड़द की दाल 500 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, बूरा या फिर पिसी हुई चीनी आप ले सकते हैं 300 ग्राम, और इलायची पाउडर एक छोटा चम्मच, और अगर आपको स्वाद ज्यादा चाहिए तो आप 2 चम्मच भी ले लीजिए। काजू, बादाम करीब करीब 50-50 ग्राम लेने हैं बारीक कटे हुए। और इसे बनाने का जो तरीका है, कमेंट्स में जिस तरह से बताया गया है कि उड़द की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी को छानकर दाल को मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लीजिए। फिर एक भारी तले की कढ़ाई में घी गर्म करके इस पिसी हुई दाल को डालें और धीमी आंच पर तब तक इसे भूनना है जब तक कि इसका रंग सुनहरा ना हो जाए, अच्छी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें कटे हुए सूखे मेवे, इलायची का पाउडर डालकर फिर से 2 मिनट भूनना है और इसकी आँच को बंद कर देना है। मिश्रण जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसमें गुड़ या फिर पिसा हुआ चीनी, बूरा जो भी है वो अच्छी तरह से मिला दें, और जब तक ये हल्का गुनगुना है तभी तक हाथों में घी लगाकर गोल गोल या अंडाकार किसी भी तरह की शेप में इस पिन्नी को आकार दे दीजिए और बस एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख दीजिए और आनंद लीजिए।
5: बिल्कुल। और देखो, एक उड़द दाल और राजमा की जो रेसिपी बताई गई दाल मखनी की, तो उड़द और राजमा को अच्छे से धोकर पानी में भिगोइए। रात भर भिगे हुए दाल में राजमा को छान लीजिए और 2 कप पानी और नमक डालकर प्रेशर कुकर में 7 सीटी बजने तक इसको पकाइए। खोलने से पहले भाप को पूरी तरह निकाल दीजिए। दाल को मखनी से अच्छी तरह से फेंट कर रख दीजिए। तड़के के लिए गहरे पैन में मक्खन को गर्म करके उसमें जीरा डालिए। जीरा उसके साथ साथ उसमें हरी मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, प्याज डालिए और और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, टमाटर पल्प डालिए और मध्यम आंच पर तेल छोड़ने तक पकाइए। और इसमें दाल, नमक और जरूरत के अनुसार 2-3 टेबलस्पून पानी डालिए और 10-15 मिनट तक उबालने दीजिए। इसमें फ्रेश क्रीम डालकर अच्छी से मिलाइए और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाइए और धनिया और फ्रेश क्रीम से सजाकर गरम गरम आप सर्व कीजिए।
6: और इन रेसिपी के बाद अब आनंद लेते हैं गीत का।

0: तो देखो चंचल, देखते ही देखते समय कितनी तेजी से चला गया और अब हमको भी चलने की तैयारी करनी चाहिए। तो
1: बिल्कुल,
0: सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।
0: तो ये सर्जिकल प्रोसीजर से जो होता है तो कितने समय तक वो चलता है, क्या फिर वापस वही परेशानी तो नहीं होती है?
1: ज्यादा करके इसके रिजल्ट्स 10 साल 5 साल अगले लंबे समय तक भी अच्छा मिल सकता है, लेकिन जी, साथ में ये चीजें हमें ख्याल में करने की, वेट कम करना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना,
0: जी जी,
1: ऑपरेशन ट्रीटमेंट का एक भाग है, साथ में ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर मसल्स ही वीक होने लगे वापस तो ऑपरेशन के बावजूद भी वापस तकलीफ हो सकती है।
0: जी,
1: सो लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस ऑपरेशन, ये दोनों के साथ में रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं।
0: जी, तो पहले से क्या सजगता बरतनी चाहिए, किस तरह से सावधानी रखें कि ये स्थिति ना आए लीकेज वाली?
1: सो पहले तो मैंने बताया ऐसे हमें ब्लैडर स्ट्रांग रखना जरूरी है, इसलिए समय समय से यूरिन कर लेना महत्व की बात है। सेकेंडली इसे हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो रेगुलर करना जरूरी है ताकि पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग रहने से अगेन ये लीकेज का प्रॉब्लम कम हो सकता है। तीसरा है प्रेगनेंसी के समय आजकल तो काफी एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बताई जा रही है, वो रेगुलर करना जरूरी है। अगर इस प्रकार से हम ख्याल रखेंगे तो शायद ये इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम काफी कम हो सकता है।
0: जी, तो किन आयु वर्ग के लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है? आजकल सुना है कि कम उम्र के युवाओं में भी,
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
0: जी,
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी के बाद में अगर वो पेल्विक फ्लोर मसल्स का ख्याल नहीं किया तो उनको जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं वो तकलीफ होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के कारण अगर वहां के नर्व्स काम नहीं कर रही है तो उन्हें परमानेंट या तो कंटिन्यूस इनकॉन्टिनेंस होता है, जो हर समय उठ के खड़े होते यूरिन लीक हो जाती है। सो कभी कभी जिसे नर्व्स के कारण जो ये पूरी सिस्टम कंट्रोल करता है वो कंट्रोल चले जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट वहां ज्यादा करके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं जिसको एड्रेस करना भी इक्वली महत्व का है।
0: जी, और जिनको ये समस्या होती है तो लोग कहते हैं कि या तो पैड का इस्तेमाल करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, या फिर कुछ थैली का इस्तेमाल, उसके बारे में बताइए वो क्या है तरीका।
1: सो यस, डायपर्स या पैड यूज करना कभी कभी जरूरी हो जाता है, लेकिन एक मैं बताता हूं, कभी कभी जो दिन में लोगों को स्ट्रेस रहता है और फिर उनको डर रहता है कि मुझे यूरिन हो जाएगी, सो वो जहां भी बाहर जाते पहले बाथरूम ढूंढते हैं।
0: जी,
1: ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। ऐसे लोगों को कभी कभी पैड यूज करने में या टेम्परेरी डायपर यूज करने में काफी फायदा होता है क्योंकि वो टेंशन चला जाता है और उसके कारण अगर वो देखेंगे तो कभी वो पैड गिला भी नहीं होता है।
0: जी,
1: लेकिन
0: जी,
1: वो एक अश्योरेंस हो जाता है। मैंने काफी लेडीज देखी

0: ये जो काम कम कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, ये जरूरी नहीं है आज के जमाने में। काफी ट्रीटमेंट मिलती है और ये ट्रीटमेंट लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपनी डे टू डे लाइफ कंटिन्यूस रखना बहुत जरूरी है। ये सब चीजों से क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर नहीं होनी चाहिए। सो ये मन में से डर निकालना बहुत जरूरी है और उसके लिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेने से आजकल काफी लोगों को फायदा होता है। लेकिन इस डर से ये प्रॉब्लम दूसरों को न बताने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है।
1: जी जी।
0: सो ये महत्व का है कि आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है और उससे काफी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। क्योंकि मैंने काफी लोगों को ये उनसे सुना है कि हम तो बस अब घर में ही बैठे रहते हैं, ये डर बना रहता है, ये जरूरी नहीं है। ट्रीटमेंट लेके अपना काम, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, बाहर जाना जरूर चालू रखना चाहिए। क्योंकि नहीं तो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू होने का डर रहता है।
1: जी।
0: तो ये इसके बारे में ये बहुत महत्व का समझना जरूरी है कि टॉक टू पीपल, टॉक टू डॉक्टर्स और सही समय में ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए।
1: जी, बुजुर्गों को हमने सुना है, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो यूरिन की समस्या के कारण कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम जाएंगे हमें वहां फिर बाथरूम की समस्या होगी। तो आपकी बातों से काफी इंस्पायर होंगे कि आप उसका एक तरीका है, उसकी व्यवस्था है, वो करके आ जाइए। तो
0: एब्सोल्युटली कुछ लोग जैसे रहते हैं जिनको पेशाब की थैली काम नहीं करती है।
1: जी हाँ,
0: उन लोगों को कभी कभी नली और बैग लगाना जरूरी पड़ता है।
1: जी जी।
0: और जब तक वो प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट न हो वो नली लगानी पड़ती है। आजकल उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं जिसे हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: ताकि पेशेंट खुद छोटी नली से दिन में 3 या 4 बार यूरिनरी ब्लैडर खाली कर सकता है
1: जी।
0: और उनको कंटिन्यूस बैग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है
1: जी जी।
0: और अपनी डेली लाइफ और काम पे वो जा सकते हैं। सो कभी कभी लोगों को एक माइंड ब्लॉक जैसा रहता है कि ये कैसे होगा, लेकिन काफी लोग कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट ये सब प्रॉब्लम की समस्या रही, एक्सपर्ट से बात कीजिए, अपना माइंड ओपन रखना बहुत जरूरी है।
1: जी।
0: मान लेना कि नहीं अभी इसकी कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मुझे सफर ही होना है, ये गलत बात है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि मेडिकल एडवाइस और आप अगर ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहे तो काफी ऑप्शंस है जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इंप्रूव हो सकती है।
1: जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें चल रही थी, हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो तुरंत यूरिन पास करके आते हैं वॉशरूम से और तुरंत 5 मिनट के अंदर वापस जाते हैं और वो जांच कराते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आता है, तो ये क्या वजह हो सकती है और इसका किस तरह से इलाज हो सकता है?
0: सो ये दो चीज होती है। अगर पूरी यूरिन एक समय में निकलती नहीं है तो वो बार बार जाने की इच्छा रहती है, जो कभी कभी यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिनरी ब्लैडर वीक होने से हो सकता है। दूसरा है जिनकी ब्लैडर सेंसिटिव होती है
1: जी।
0: जिसके कारण थोड़े बूंद रहने से भी वो सेंसेशंस बने रहते हैं और उसके कारण बार बार जाने की इच्छा रहती है, जाके बाथरूम में काफी समय तक बैठते हैं लेकिन ज्यादा यूरिन होती नहीं है। सो ये कभी कभी सेंसिटिव ब्लैडर के कारण हो सकता है
1: जी।
0: जो पहले जांच करके हम देखते हैं कि अंदर कोई रोग नहीं है, अगर वैसे नहीं रहा तो दवाइयों से वो सेंसेशन कैसे कंट्रोल में करना वो हम कोशिश करते हैं। और तीसरी बात कि पेशेंट को भी कभी कभी अपने आप वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता रहती है कि एक बार करके आए तो सेंसेशन बायपास करना सीखना पड़ता है कि थोड़े सेंसेशंस रहे हम उसको बायपास कर देंगे, एक बार वो पेशेंट अगर बिजी हो गया तो सेंसेशन काफी समय तक वापस चला जाता है और बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: जी,
0: लेकिन ये सब चीजें एक बार टेस्ट कराने के बाद करनी चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि अंदर कोई रोग नहीं है
1: जी।
0: और फिर ये काफी चीजों से लोग अपने आप अपने को सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं कि छोटे छोटे ऐसे सेंसेशंस हुए उसको बायपास करके हम अपने काम में लग जाएं
1: जी।
0: क्योंकि नहीं तो सेंसेशन इतना इरिटेबल हो जाता है कि बार बार फिर उनको इच्छा रहती है कि मैं जाके यूरिन करके आऊं
1: जी। और सारा फोकस, सारा ध्यान उसी पर रहता है।
0: एब्सोल्युटली
1: कि कुछ भी शुरू करने से पहले पहले यूरिन
0: के और फिर वो डर सा रहता है कि अगर कपड़े में कुछ बूंदे हो गई
1: तो,
0: और कुछ स्मेल आने लगी तो एक एम्बरेसमेंट जैसा होने लगता है, इसलिए दे बिकम वेरी कॉन्शियस। सो ये

0: चीजें थोड़ी आई थिंक सेल्फ कॉन्शियस रहना जरूरी है कि हर सिम्टम के पीछे भागना नहीं है, थोड़ा थोड़ा मानसिक बायपास करना भी सीखना जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी आपने स्मेल की बात की तो यहाँ पर एक बात जहन में आई है कि अमूमन लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हमारी यूरिन में दुर्गंध है, तो ये क्या लक्षण हो सकता है, स्मेल आ रही है अलग तरह से और कलर चेंज होता है कई बार।
0: सो एक बात कि शायद यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है
1: जी,
0: क्योंकि काफी लोग पानी कम कर देते हैं ये डर से कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यूरिन शरीर का कचरा है, उसमें सब केमिकल्स वगैरह रहते हैं जिसकी स्मेल आती है। सो ज्यादा पानी पीने से यूरिन काफी डाइल्यूट हो जाती है और स्मेल कम हो जाती है
1: जी।
0: दूसरी बात, कुछ दवाओं ऐसी रहती है जिसकी स्मेल यूरिन में आ सकती है। तीसरी बात, कुछ डाइट जिसके कारण भी यूरिन में स्मेल आ सकती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ज्यादा पानी पीने से वो डाइल्यूट होने से स्मेल काफी कम हो जाती है। दूसरी बात है, जिनको कुछ ड्रॉप्स कपड़े में रह जाते हैं देन वो स्मेल कंटिन्यूअसली उनको ऐसे लगता है कि यूरिन की स्मेल आती है। सो वहां कभी कभी एब्जॉर्बेंट पैड वगैरह पहनने से ये प्रॉब्लम कम होती है कि कपड़े में यूरिन जमा न होने से वो भी स्मेल कम हो सकती है।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को, कौन सा गाना?
0: जरूर, आई थिंक श्रेया घोषाल इज अनदर एक्सलेंट सिंगर
1: जी जी,
0: और उनका एक अच्छा गाना है मोहे रंग दो लाल।
1: क्या बात,
0: बाजीराव मस्तानी से।
1: जी बाजीराव मस्तानी फिल्म का बड़ा ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे। और अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी स्टोन और यूरिन की समस्याओं का आपस में क्या तालमेल है और किस तरह की बीमारी ये मिलके रचते हैं?
1: सो यूरिनरी स्टोन्स वो भी एक काफी बड़ी समस्या बन रही है,
0: जी
1: और कुछ कुछ इलाके में जहां ज्यादा गर्मी है वहां स्टोन डिजीज काफी लोगों को तकलीफ दे रहा है। स्टोन के दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, स्टोन बढ़ते जाता है
0: जी जी
1: और किडनी पूरी डैमेज हो जाती है तब तक पता नहीं चलता है। और कुछ स्टोन्स छोटे स्टोन्स रहते हैं, जब वो स्टोन नीचे निकलने की कोशिश करती है इतना दर्द देता है कि पता चलता है कि स्टोन है। अब स्टोन बनने के अलग अलग कारण है, सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना,
0: जी
1: क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से जो क्षार जो बनते हैं वो किडनी में एक बार जमा होने लगे तो वो फोकस बन के स्टोन्स बढ़ने लगते हैं।
0: जी जी
1: सो सबसे बड़ी दवाइयां पानी है। दूसरी बात, कुछ लोगों को कैल्शियम और यूरिक एसिड, उनकी मेटाबॉलिज्म
0: जी
1: एब्नॉर्मल शरीर में होने से भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। तीसरी बात, अगर यूरिन कॉन्स्टेंटली जमा होती है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में, उसके कारण भी स्टोन बन सकते हैं। सो ये अलग अलग कारणों से स्टोन बनते हैं। सो हमारे देश में रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा कोई लोग मानते नहीं है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है।
0: जी
1: कुछ लोग मानते हैं कि हम हेल्थ चेकअप कराएंगे, उसमें कुछ निकलेगा हमको डॉक्टर के
0: अरे
1: पास भागना पड़ेगा,
0: इसलिए मत चेकअप
1: उसे चेकअप मत
0: कराओ
1: करवाओ,
0: जी जी
1: लेकिन चेकअप करना जरूरी है ताकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुए तो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, आजकल स्टोन के लिए काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं और ट्रीटमेंट आसान हुई है।
0: जी
1: कभी कभी छोटे स्टोन्स के लिए कुछ दवाइयां देते हैं, उससे निकल सकता है, लेकिन महत्व का ये हमें कॉन्स्टेंटली चेकअप रखना कि स्टोन के कारण किडनी पे प्रेशर आके किडनी डैमेज नहीं हो रही है। क्योंकि कभी कभी पेन नहीं होता है लेकिन किडनी पे प्रेशर आने से धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है और फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
0: जी
1: सो ये भी गलत बात है कि अगर दर्द नहीं है तो स्टोन के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तपास करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि स्टोन की पोजीशन क्या है, उसके कारण किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है कि नहीं, और पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है, उस हिसाब से निर्णय लेते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी
1: आजकल एंडोस्कोपिक या दूरबीन से और लेजर एनर्जी के सोर्स अवेलेबिलिटी के कारण ट्रीटमेंट काफी इजी हो गई है
0: जी
1: और बड़ा कट वगैरह करके स्टोन निकालने की आवश्यकता नहीं रही है।
0: जी
1: सो अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। लेकिन एक बात हमें यह भी जानना जरूरी है कि कोई भी दवाई या कोई भी ऑपरेशन की आड़ असर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी तरह ऑपरेशन करने के बाद में भी अगर पेशेंट के टिश्यू ठीक नहीं रहे तो फिर वहां दिक्कत हो सकती है।
0: जी
1: दूसरी बात, स्टोन के साथ डर लगता है इन्फेक्शन का, क्योंकि जब किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और उसके साथ में इन्फेक्शन बन गया तो वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, जिसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं। क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ, किडनी ब्लॉक है, इन्फेक्शन निकलने के लिए रास्ता नहीं है, फिर इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल जाता है, वो काफी सीरियस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं। सो स्टोन के साथ इन्फेक्शन को दूसरी चैलेंज है। तीसरी बात, स्टोन और डायबिटीज, क्योंकि अगेन डायबिटीज के कारण इन्फेक्शन होने की शक्यता बढ़ जाती है। सो ये सब चीजों से सिंपल स्टोन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कभी कभी काफी सीरियस बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं। सो अगेन इन शॉर्ट, अगर रेगुलर चेकअप रखेंगे तो वो समय से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
0: जी जी
1: दूसरी बात है, वंस अ स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, और हमारे पास ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम

0: आपको अश्योर कर सकें कि आप ये लीजिए, आपको भविष्य में स्टोन नहीं होगा।
1: जी जी,
0: ये गलत बात है। इसलिए रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। तीसरी बात है, लोग आके पूछते हैं कि हम इस कुएं का पानी पिए या इस प्रकार की ट्रीटमेंट करें। आप जो ठीक लगे वो ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन महत्व का है कि चेकअप रखना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट की, कुछ पान खाए, कुछ काढ़ा पिया, अच्छी बात है। अगर जो ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट नहीं है और आप उसे कोशिश करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग फिर तपास नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि स्टोन चला गया, लेकिन अगर स्टोन अंदर बड़ा होके किडनी को डैमेज करे तो आपको पता नहीं चलेगा।
1: बिल्कुल।
0: सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन रेगुलर चेकअप और एक बार अच्छा मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: ये गलत बात है कि हर समय आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताएंगे कि आप ऑपरेशन करवा लो। ये कुछ कुछ चीजें लोग मानते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। हर डॉक्टर ये करने में कोई अच्छी बात है वैसा नहीं मानता है। लेकिन उस डर से अगर हमने व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं ली और फिर ऐसा समय आता है कि किडनी एक बार डैमेज हो गई, फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो यस, स्टोन के लिए चेकअप महत्व का है। कुछ कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जैसे पानी पीना बहुत महत्व की बात है। एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना जरूरी है। ज्यादा एनिमल प्रोटीन लेना एडवाइजेबल नहीं है। और कुछ कुछ जिसे ऑक्सलेट के प्रॉब्लम है उनको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। लेकिन सब पेशेंट को डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करके जैसे बीज जैसी चीजें सब वो बीज जैसी टोमेटोज वगैरह खाना बंद कर देना, वो भी सही नहीं है। सो स्टोन ट्रीटमेंट में भी काफी मिथ्स है, वो जरूरी नहीं है।
1: जी जी, तो अभी बीज की बात की तो अभी ध्यान में आया कि आजकल तो सोशल मीडिया पर, गूगल पर छाया हुआ है कि ये कद्दू का बीज और फ्लैक्स सीड और जाने कौन कौन से बीज खाएं तो स्टोन से निजात पाया जा सकता है, यूरिन की समस्या ठीक हो जाएगी, ये प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। तो
0: मेरी राय में काफी गलत बातें हैं। एज अ साइंटिस्ट, जब तक मुझे एडिक्वेट एविडेंस नहीं है, जब तक इतना एक्सपीरियंस जो रिपोर्ट के साथ बताया नहीं गया कि ये करने से डेफिनेट फायदा होता है, वो चीजें मान्य करना वो पॉसिबल नहीं रहता है।
1: बिल्कुल।
0: एट द सेम टाइम एवरी पथी हैज सम ट्रीटमेंट फॉर एवरी प्रॉब्लम, बीट होम्योपैथी, बीट एलोपैथी, बीट आयुर्वेदिक। बट ये समझना जरूरी है कि ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसकी आड़ असर न हो। एट द सेम टाइम रेगुलर चेकअप करके उसका रिजल्ट देखना जरूरी है।
1: जी।
0: बाकी ये काफी चीजें जो सोशल मीडिया पे या गूगल में आती है, साइंटिफिकली सब चीजें प्रूव नहीं हुई है।
1: जी।
0: ये कुछ लोगों का अनुभव है, लेकिन वो अनुभव सब पेशेंट के लिए सही है कि नहीं, वो एक बड़ा प्रश्न है।
1: बिल्कुल।
0: सो इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक एनालिसिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट।
1: जी, इस तरह की बीमारियां जब होती है तो डॉक्टर के शरण में ही जाना चाहिए, वही ज्यादा अच्छा होता है। किडनी स्टोन जब होता है तो उसके क्या बेसिक लक्षण क्या होते हैं और उस क्या स्थितियां हो कि मरीज डॉक्टर के पास जाए और किस डॉक्टर के पास जाए?
0: सो बेसिकली पेन, अगर सीवियर पेन रहा पीछे के भाग में या फ्लैंक जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टोन के लिए कॉमन सिम्टम है। इन्फेक्शन दूसरा सिम्टम है। ब्लड इन द यूरिन, ये एक सिम्टम बहुत महत्व का है, क्योंकि स्टोन के कारण तो जरूर ब्लड आ सकता है, लेकिन हमें हमेशा फिक्र रहती है कैंसर की, क्योंकि वो एक सिम्टम है जो अगर किसी मरीज को हमने सुना कि उनके इनमें ब्लड जाती है, ये चेकअप करना बहुत जरूरी है कि कहां यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर नहीं है। सो बेसिकली जहां तक स्टोन का प्रश्न है, मेनली पेन इज द कॉमनेस्ट सिम्टम, सेकंड इज इन्फेक्शन, एंड थर्ड कभी कभी रूटीन इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल जाता है, जो सोनोग्राफी इज अ सिंपल टेस्ट।
1: जी जी।
0: जो सोनोग्राफी रूटीनली करवाने में न तो कोई उसकी आड़ असर है, न तो इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन काफी यूरिनरी ट्रैक के प्रॉब्लम प्राइमरी डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है।
1: जी, तो उसे पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुने।
0: जरूर, वापस हम पुराने गानों की तरफ चले तो रफी साहब का एक बहुत अच्छा गाना है, अकेले हैं चले आओ।
1: क्या बात है।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमें बताइए कि लोग सर्जरी के नाम ढूंढ लेते हैं और सर्जरी के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, तो आप बताइए कि ये एक रोबोटिक सर्जरी और पारंपरिक सर्जरी एक होती है, तो मरीज इनका नाम सुन के बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं, क्या है ये, दोनों में किस तरह का अंतर है?
1: यहां मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि जब भी ऑपरेशन का प्रश्न आता है, अगर आपके मन में डाउट है तो जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए,
0: जी,
1: क्योंकि ये महत्व की बात है कि कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये जो सलाह दे रहे सही है कि नहीं। सो आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग कि
0: बिल्कुल.
1: बड़ी अगर सर्जरी आपको करवानी है जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या कोई भी सर्जरी फॉर दैट मैटर, अगर आपको रहा कि जरूरी है या नहीं, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज वैसा है कि उसके कारण एक तो हमें बड़ा कट लेना नहीं पड़ता है, दूसरी बात है कि रिकवरी पीरियड ज्यादा अच्छा रहता है, कम रहता है, तीसरी बात है कि टेक्निकली ये सब साधनों से जो मैग्निफिकेशन और प्रिसिशन हमें मिलता है उससे ऑपरेशन करना और आसान हो जाता है। लेकिन महत्व का है दैट इट्स नॉट ओनली द टूल, इज द पर्सन बिहाइंड द टूल दैट इज इंपॉर्टेंट।
0: जी,
1: सो हर टेक्नोलॉजी आई और वो कराने से फायदा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं कि जहां ओपन सर्जरी गिव्स बेटर रिजल्ट्स।
0: दोस्तों, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा. आज आपको सुनवा रहे हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत. ये बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद.

0: दोस्तों, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहतनामा।
1: जी।
2: ये बात नहीं कि हर चीज लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक करने से ही अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। ओपन सर्जरी से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है और इसी के कारण एक्सपर्ट के पास जाके हर प्रोसीजर के क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज वो समझना जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण भी काफी आउटकम में इंप्रूवमेंट होता है, उसमें भी प्रश्न नहीं है।
1: जी।
2: ये बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई टेकिंग प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन, अपने आप या अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों की राय लेने से ज्यादा महत्व का है। आप मेडिकल राय लीजिए और जरूर पड़ी तो सेकंड ओपिनियन लीजिए।
1: जी बिल्कुल, उससे निश्चिंतता हो जाती है कि सेम बात दो डॉक्टर्स ने बोली है। और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है और ये बड़ी ऑनेस्ट बात है कि एक डॉक्टर की ओर से ये सलाह दी जा रही है, बड़ी बात है। और वापस हम एक बार प्रोस्टेट की ओर जाते हैं। प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में, कितनी ये आसान होती है और कितनी कठिन होती है मरीज के लिए?
2: मरीज के लिए आजकल ये न्यू टेक्नोलॉजी के कारण इतनी तकलीफदायी नहीं है। वो एनेस्थीसिया में करते हैं, दूरबीन से करते हैं ताकि कोई कट वगैरह या उसका पेन नहीं रहता है।
1: जी हाँ।
2: और रिकवरी भी काफी फास्ट होती है। और आजकल ये सब नई टेक्नोलॉजी से काफी ऑप्शंस अवेलेबल है। और पहले जैसे बड़ा कट लेना, बहुत ब्लीडिंग हो रहा, बहुत दिनों तक नली रखना, वो सब दे आर थिंग्स ऑफ पास्ट। सो रिकवरी काफी जल्दी होती है और पेशेंट अपने काम पे बहुत जल्दी वापस जा सकता है। महत्व का है दैट डिसीशन मेकिंग कि जरूरी है या जरूरी नहीं है और किस प्रकार की सर्जरी उस पर्टिकुलर केस के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डिसीशन और डिस्कशन महत्व का होता है।
1: जी,
2: अब हर ऑपरेशन के मैंने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद में वीर्य बाहर आना बंद हो सकता है, कभी कभी वापस पैसेज नैरो होके जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं वो भी हो सकता है। सो कोई भी सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं रहती है और हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर रहती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम क्यों सर्जरी करवा रहे हैं, उसके कितने फायदे हैं, कितने गैर फायदे हैं, और फिर वो समझ के फाइनल निर्णय लेना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है।
1: जी, तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, उसकी सर्जरी से क्या उनकी मैरिज लाइफ पर भी असर पड़ता है?
2: सो मैंने बताया ऐसे कि वो जो वीर्य बाहर आना कभी कभी बंद हो सकता है, आजकल कुछ नई टेक्निक ऐसे भी आई है कि ये भी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकता है। इसलिए यंग पेशेंट्स में हो सके इतने हम दवाइयों से कोशिश करते हैं कि अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हम ऑपरेशन की तरफ कम जाना पसंद करते हैं। फिर भी मैंने बताया ऐसे आजकल काफी प्रोसीजर लाइक यूरोलिफ्ट, रेज्यूम, आईटीन, ये अलग अलग नाम है लेकिन उससे ये प्रॉब्लम कम होने की शक्यता ज्यादा है। लेकिन उसके रिजल्ट्स लंबे समय तक कितने अच्छे रहेंगे वो बताना मुश्किल है। सो उस पर्टिकुलर पेशेंट की जरूरत क्या है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी प्रोसीजर वो पेशेंट के लिए अच्छी है।
1: जी बिल्कुल। और अब आखिर में हमें बताइए डॉक्टर साहब कि अपने देश में प्रोस्टेट संबंधी जागरूकता को लेकर किस तरह की सजगता है और क्या सजगता बरतनी चाहिए कि प्रोस्टेट जो आजकल ये बीमारी बढ़ रही है कम हो जाए?
2: काफी चीजें, लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है। जैसे काफी रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से भी पता चलता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर हेल्थ चेकअप। कुछ एब्नॉर्मल यूरिनरी सिम्टम्स रहे तो समय में जांच करना, ये

0: सबसे बड़ी बात है. अदरवाइज कंपेयर टू जब हम पहले प्रोस्टेट के बारे में सोचते थे, लोग आते थे कॉम्प्लिकेशंस लेके आते थे, नली लगा के आते थे. वो काफी अवेयरनेस के कारण प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो रही है. प्लस अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट मिलने लगी है. पहले दवाइयां नहीं थी, अभी दवाइयां से ऑलमोस्ट 60-70% पेशेंट्स को हम राहत दे सकते हैं. सो ये काफी चेंजेस हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग.
1: जी बिल्कुल.
0: और आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से
1: जी,
0: ये लोगों को अश्योरेंस देना बहुत जरूरी है कि खाली रिपोर्ट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है.
1: जी, जी.
0: और जब हम भी निर्णय लेते हैं उस समय हम भी ये देखते हैं कि हमें रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना
1: है.
0: सो ये बहुत महत्व की बात है. सो ये डर रखना कि हम चेकअप करेंगे कुछ निकल आएगा और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है. लेकिन अगर पता चला तो समय में प्रिकॉशंस ले सकते हैं और राइट समय पे राइट ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर सकते हैं.
1: जी सही बात है. प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तो जाहिर सी बात है कैंसर के नाम से लोग डरते ही हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर क्या पूर्णतः इलाज हो जाता है?
0: आई थिंक बहुत महत्व की बात आपने कही है.
1: जी
0: पहली बात, एज वेरी राइटली यू सेड, कैंसर नाम सुन से लोग घबरा जाते
1: जी,
0: हैं.
1: जी बिल्कुल.
0: प्रोस्टेट का कैंसर आजकल जब अर्ली डिटेक्ट होता है तो इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एट ऑल. कैंसर शब्द बड़ा है लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्लान, कभी कभी कैंसर जानने के बाद भी हम बोलते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है.
1: जी जी.
0: क्योंकि इतना लो ग्रेड और अर्ली स्टेज में रहता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती. और दूसरा, ऐसे स्टेज में भी लोग आते हैं कि जहां पूरे बदन में वो स्प्रेड हो चुका रहता है.
1: अच्छा.
0: तो फिर उसकी ट्रीटमेंट काफी दिक्कत वाली बन जाती है. लेकिन आजकल प्रोस्टेट कैंसर की काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहां हम अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, हम ये बात करते हैं कि हम क्योर करने की कोशिश करते हैं. ज्यादा करके पहले जब कैंसर की बात आती थी हम बताते थे हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो कैंसर प्रोस्टेट के लिए काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है.
1: जी.
0: जब खाली लोकली प्रोस्टेट में डिजीज रहता है तो जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, जहां पूरी ग्रंथि निकाल देते हैं, या तो रेडिएशन करके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रिजल्ट्स रहता है. अगर वो आगे थोड़ा स्प्रेड हुआ रहता है तो फिर उस हिसाब से रेडिएशन या हार्मोन इंजेक्शंस की हम मदद लेते हैं. और जिनको काफी स्प्रेड हुआ रहता है उनको हार्मोन ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं. बट आई कैन टेल यू, ये कैंसर इतना डरने वाला कैंसर नहीं रहा है. और रेगुलर चेकअप, पीएसए चेकअप अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफी अच्छे हो गए हैं.
1: डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए, कौन सा गाना सुनवाए?
0: सरस्वती चंद्र का वो गाना, चंदन साबदन
1: चंचल चितवन.
0: चंचल चितवन
1: बेहतरीन गाना,
0: अच्छा
1: है.
0: गाना है
1: जी. मुकेश की आवाज में भी है,
0: मुकेश की आवाज में, लता जी की आवाज में भी है.
1: जी
0: मुझे लगता है कि मुकेश की आवाज में सुनेंगे.
1: मुकेश की आवाज वाला गाना सुनते हैं
0: जरूर.

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति कब आती है और किस तरह के जोखिम होते हैं उसमें, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट से किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं?
1: जिसे किडनी फेलियर होता है, जिसके अलग अलग कारण है, और जब दोनों किडनी फेल हो जाती है तब परिस्थिति आती है कि वो किडनी रिप्लेसमेंट करना या किडनी फंक्शन रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश में अब सबसे कॉमन कारण डायबिटीज बन रहा है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर,
0: जी
1: और कुछ किडनी के इन्फेक्शन या कभी कभी स्टोन्स वगैरह की किडनी ऑब्स्ट्रक्ट होके अगर सही समय में ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर ये किडनी डैमेज हो जाती है।
0: जी
1: जब दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तब हमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि किडनी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इज अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन अवर बॉडी,
0: जी जी
1: और जब वो काम नहीं करता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाना शुरू हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खून बनाने में तकलीफ होने लगती है, किडनी हमारा बोन मेटाबॉलिज्म में भी ख्याल करती है, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। और कभी कभी जब इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस या पोटेशियम बढ़ने से या एसिडोसिस बढ़ने से वो कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, और उस समय इसे हम एंड स्टेज रिनल डिजीज कहते हैं, ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है, या तो डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है, जो
0: जी
1: हफ्ते में 2 या 3 बार मरीज को मशीन के ऊपर जाके ये ब्लड साफ करना या जो केमिकल्स जो बदन में तकलीफ देती है उनको क्लीन करना जरूरी हो जाता है, दैट इज डायलिसिस।
0: जी
1: लेकिन डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता है और उससे पूरे किडनी के फंक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है।
0: जी जी
1: सो द बेटर ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
0: जी
1: नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन से नई किडनी मरीज को देके जो फिर वो किडनी का काम अपने आप ले लेती है, जिससे नियर नॉर्मल लाइफ पेशेंट की हो सकती है।
0: जी
1: लेकिन यहां कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स। हर साल कुछ 2 लाख मरीज इंडिया में है जिनको ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और अल्टीमेटली 10% मरीज हैं जिनको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है,
0: जी जी
1: क्योंकि डायलिसिस अब काफी सेंटर्स में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिलना डिफिकल्ट है।
0: जी जी
1: 2 प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जिसे हम रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं या डिजीज डोनर या कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं।

0: लिविंग डोनर में जहां पेशेंट और डोनर दोनों की किडनीज मैच होती है, जो अलग अलग ब्लड टेस्ट से हम चेक करते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन डोनेट करता है उनकी हेल्थ को हमको ज्यादा चेकअप करना बहुत जरूरी है. ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने डोनेट किया और खुद पेशेंट बन गए.
1: बिल्कुल.
0: सो पहले वो सब हम चेकअप करते हैं कि जो डोनेट करना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. फॉर्चुनेटली एक किडनी से कोई भी पेशेंट अच्छी जिंदगी जी सकता है, और इसके कारण अगर बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक रहे तो एक किडनी डोनेट कर सकता है. सो जिसे हम लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इसमें भी कुछ गवर्नमेंट्स के कानून है, उस हिसाब से हम डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं.
1: जी जी.
0: लेकिन सबसे जरूरी बात है, जैसे हम डिजीज डोनर और कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आफ्टर डेथ अगर हम किसी को मदद कर सके तो इससे बड़े चीज क्या है.
1: जी.
0: और डेथ हम ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा हार्ट बंद हो गया तो हमारी डेथ हो गई. एक्चुअली ये ब्रेन है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है.
1: जी जी.
0: और जब ब्रेन काम करना बंद हो जाता है तो उसे हम ब्रेन डेड कहते हैं.
1: जी जी.
0: नाउ कुछ मरीज जिनके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, जिनको एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, जहां टेक्निकली व्यवस्थित जांच करके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मरीज अभी ब्रेन डेड है, जिसको वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, अगर उनके ऑर्गन्स यूज कर सकें तो वो ऑर्गन से काफी लोगों को सेकेंड लाइफ मिल सकती है, जिसे हम कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं. ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है.
1: जी जी.
0: क्योंकि अदरवाइज यही ऑर्गन्स या तो हम दफना देते हैं या हम जला देते हैं. अगर समय में ये ऑर्गन्स अगर मिल गए तो काफी लोगों की जिंदगी सुधर सकती है.
1: जी.
0: ये बात मानना गलत है कि कहां भी एक्सीडेंट हो गया कहां से हम ऑर्गन ले लेंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे. ये सब अगेन मिथ्स है. ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले तो मरीज ज्यादा करके इस बीमारी से जब आईसीयू में वगैरह रहते हैं, जब पूरी ट्रीटमेंट की कोशिश हो जाती है, उसके बावजूद जब चार एक्सपर्ट बताते हैं कि वापस जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है, उस समय हम पेशेंट के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो रिलेटिव से पूछते हैं कि आप डोनेशन के लिए तैयार है कि नहीं. सो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत कम समय मिलता है, इसके बाद में हार्ट बंद हो जाता है. अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो ये जो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स को मिल रहा था डेड बॉडी में, जिसके कारण ऑर्गन्स कुछ समय तक काम करते हैं, अगर उस समय के दरमियान हमको ऑर्गन मिले तो ही हम यूज कर सकते हैं.
1: जी जी.
0: सो ये अगर लोगों को अवेयरनेस रही कि समथिंग कॉल्ड कैडेवर ट्रांसप्लांट जैसा है, जो इस प्रकार के ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन्स जो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जब लिए जाते हैं और पेशेंट्स को देते हैं, काफी पेशेंट्स को सेकंड लाइफ मिलती है.
1: जी.
0: सो ये जानना बहुत जरूरी है.
1: जी.
0: दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बाद भी 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली और किसी का ऑर्गन जब मिलता है वो बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है.
1: जी जी.
0: उसके लिए जांच जरूर करते हैं, उसके लिए काफी दवाइयां हैं जिससे ये रिजेक्शन न हो, वो कोशिश होती है, लेकिन हर बॉडी वो एक्सेप्ट कर सकेगी कि नहीं वो भी प्रश्न रहता है. सो ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है. लेकिन जो मरीज ऑर्गन फेलियर से तकलीफ में है उनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, उनको एक नई लाइफ मिल जाती है. सो लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बहुत महत्व की है.
1: जी.
0: और इसके पीछे भी काफी मिथ्स जो वगैरह रहती है उसको दूर करना बहुत जरूरी है.
1: जी जी.
0: काफी लोग खाली पड़ते हैं कि ये ऑर्गन चोरी हुई या अनरिलेटेड पैसे दे के ट्रांसप्लांट, वो कॉमन नहीं है.
1: जी जी.
0: इसीलिए राइट सेंटर में राइट लोगों से सलाह लेके राइट लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम ये करेंगे तो काफी लोगों को हम नई जिंदगी दे सकते हैं. इसलिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेन डेथ

0: इज डेथ। और उनके समय में ऑर्गन अगर हम निकाल के किसी को डोनेट कर सके तो काफी लोगों को फायदा हो सकता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, बड़ी तथ्यपरक बात कही है आपने। और ये अमूमन लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, सांस रुकी तो इंसान चला गया, लेकिन आपने कितनी जानकारी वाली बात बताई कि मस्तिष्क, ब्रेन का काम करना जरूरी है, ब्रेन रुका तो फिर इंसान गया। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही जरूरी बात है, वो है यूरिनल ट्रैक में कैंसर की समस्या। हम चूंकि यूरिन के विषय पर बात करें तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: सबसे बड़ा लक्षण ब्लड इन द यूरिन, जब भी रिपोर्ट में या मरीज देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, उस समय जांच करना बहुत जरूरी
1: जी
0: है।
1: जी
0: किडनी कैंसर, जब ये हम जांच करते हैं तो कुछ कुछ किडनी में भी हमें कैंसर दिखाई देता है।
1: जी
0: सबसे बड़ी समस्या ब्लैडर कैंसर की है,
1: जी जी
0: और द कॉमनेस्ट कॉज इज स्मोकिंग और टोबैको,
1: ओ
0: जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन
1: बिल्कुल
0: टोबैको से ये ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है। और वो अगर समय से ट्रीट किए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर वो ज्यादा स्प्रेड हो गया तो काफी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। सो अगेन, यहां दो तीन चीजें हैं। ऑफकोर्स, लाइफ स्टाइल चेंजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक टोबैको इज अनदर थिंग जिसके कारण शरीर में काफी जगह में कैंसर होने की शक्यता रहती है। और तीसरा है रेगुलर हेल्थ चेकअप, जो अगेन समय में कैंसर की बीमारी पता चलने से उसकी समय में अगर ट्रीटमेंट कर दी तो रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं।
1: जी, मतलब ये पूर्णतः इलाज हो सकता है अगर समय पर।
0: एब्सोल्युटली
1: जी
0: एब्सोल्युटली।
1: तो अब डॉक्टर साहब, चलते चलते एक गाना आपकी पसंद का सुनवाएं, कौन सा गाना?
0: जरूर, आई थिंक ये आइकॉनिक गाना है, लग जा गले फिर कभी मुलाकात हो ना हो।
1: जी, अमूमन अंताक्षरी हो या कहीं कोई स्टेज प्रोग्राम हो या रेडियो का कोई प्रोग्राम हो, इस गाने के बगैर अधूरा सा रहता है। तो आज का
0: एब्सोल्युटली
1: ये प्रोग्राम भी जैसे अधूरा सा था इस गाने के बगैर। फिल्म है वो कौन थी, लता मंगेशकर की आवाज, पर्दे पर साधना, सुनते हैं ये गाना।

0: और अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को सलाह दीजिए डॉक्टर साहब कि ये प्रोस्टेट के बढ़ने के बारे में, प्रोस्टेट और यूरिन की समस्याओं से जूझते लोगों की सजगता के लिए आप चंद शब्दों में क्या कहेंगे?
1: कुछ चीजें शरीर में कुदरती बढ़ती है, लाइक प्रोस्टेट
0: जी
1: ग्लैंड. हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के हिसाब से बढ़ती है. इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वैसी बात नहीं है. लेकिन रेगुलर चेकअप करने से, एक्सपर्ट के पास चेकअप कराने से, समय में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा हो तो ट्रीट कर सकते हैं. कैंसर बड़ा शब्द है, लेकिन मॉडर्न टाइम में काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. अगर कैंसर को समय में डिटेक्ट किया तो अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं. यूरिनरी प्रॉब्लम्स कभी कभी छोटे रहते हैं, तकलीफ ज्यादा देते हैं. लाइफस्टाइल चेंजेस से और प्रॉपर काउंसलिंग और दवाई समय से लेने से काफी टेंशन्स कम हो सकती है और यूरिन के प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर सकते हैं. किडनी स्टोन्स हमारे देश में कॉमन है. अगेन, राइट टाइम में डिटेक्शन होना जरूरी है.
0: जी
1: और सबसे बड़ी बात, गूगल या कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए अच्छा है, हमें जानना जरूरी है, लेकिन उस हिसाब से अपने आप ट्रीटमेंट डिसाइड करना, अपने आप टेंशन ले लेना, अपने मित्रों से सलाह लेना, ये सही नहीं है. क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बातें आती हैं, वो साइंटिफिकली सही है कि नहीं वो बताने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए.
0: बिल्कुल
1: सो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसी प्रश्न आपके मन में आए, आप एक्सपर्ट को पूछिए.
0: जी
1: अगर आपको कुछ सलाह दी गई है, वो ट्रीटमेंट के बारे में है, ऑपरेशन के बारे में है, अवॉइड मत कीजिए. अगर आपको डाउट है, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए. लेकिन ये बहुत महत्व की चीज है कि जो डिजीजेस अगर हमने समय में उसको पकड़ लिया, समय में ट्रीटमेंट उनकी आपको सही तरह से मिल गई, तो आगे जाके उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए और वो क्योर होने की शक्यता बढ़ जाती है.
0: जी
1: आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ, वी ऑल नो.
0: जी
1: और आज के जमाने में जहां इवन आफ्टर एज ऑफ 60, 70, 80 एंड 90 लोगों एक्टिव है, हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है. यह भी मैं जानता हूं कि हेल्थ ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो रही है. जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इट इज कमिंग एट अ कॉस्ट. सो यस, पहले 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था, अभी 2 दिन में ट्रीटमेंट हो जाती है.
0: जी जी
1: लेकिन इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर.
0: जी
1: सो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रिवेंशन, एंड दैट इज हैविंग अ गुड लाइफ स्टाइल चेंजेस, एडिक्वेट वाटर ड्रिंकिंग, एंड टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप. आई थिंक दिस विल गिव अ गुड रोड मैप फॉर गुड हेल्थ, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट क्रुशियल थिंग इन मॉडर्न टाइम.
0: जी
1: थैंक यू वेरी मच.
0: डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी. विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार.
1: नमस्कार
0: दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत. आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग. चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान.

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। समय के स्केल पर हमें नहीं पता कि कब हमारे दिल पर लिख गया था तुम्हारा नाम। समय की शुरुआत से चल रहा है जो सफर, उसे समय के आखिर तक कायम रहना है। हम और तुम समय के थपेड़ों के बावजूद मिलते रहे हैं, हम चलते रहे हैं साथ, और बस साथ ही चलते रहना है हमें। ये सफर जिंदगी का नहीं, समय का सफर है, और हर पल के चेहरे पर तुम्हारा नाम लिखा होना चाहिए।

दुनिया बधावासियों का मेला है, ये धक्के मारती दुनिया, ये कंधे चीलती दुनिया, ये दुनिया जिसमें ख्वाब टूटते हैं, ये दुनिया जिसमें लगती है दिल की खरोंचें। कभी कभी लगता है कि दुनिया की भीड़ से अलग हो कोई ऐसा अलग कोना जहां हम तुम साथ बैठ सकें और अपने दिल का राग छेड़ सकें, ऐसा कोना जहां हम खुद से मुलाकात करें और फिर बस वो लम्हे हमेशा के लिए खिल जाएं दिल की वादियों पर।

नया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए।

आवाजों का कोई मजहब नहीं होता। आवाजें दुनिया की तमाम सरहदों के पार चलती हैं। हम सब महज एक शख्स नहीं, एक किरदार नहीं, आवाजें हैं हम। हम आवाजों की दुनिया के मुसाफिर। हमें कायम रहना है हमेशा एक आवाज की शक्ल बनकर। तुम्हारी आवाज गूंजती रहे कानों में जैसे चिड़ियों की चहचहाहट, जैसे बांसुरी की मीठी तान, जैसे झरने की प्यारी मुस्कान।

तुम्हारी बातें गूंजती हैं हमेशा कानों में, गूंजती है तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान का एक सुर है जो इस कमरे में गूंजता रहता है हमेशा। तुम नहीं होती तब भी तुम होती हो अपनी सुरीली बोली बनकर। तुम्हारी आवाज को अपने कानों में सजा लेते हैं हम, और बस उसके बाद हमें दुनिया में किसी चीज की तरह

0: छाया गीत में आज थे भूपिंदर सिंह के कुछ बेमिसाल नगमे। फिल्मों के नाम, थोड़ी सी बेवफाई,
1: आज बिछड़े हैं,
0: फिल्म मौसम,
1: दिल ढूंढता है फिर वही,
0: फिल्म किनारा,
1: मेरी आवाज ही पहचान है,
0: और फिल्म दूरियां,
1: सामने दीवार थी गुदरियों की।
0: आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद।
5: संध्याकाळचे 5:30 वाजलेले आहेत। आता आमच्या युवक मित्रांसाठी कार्यक्रम युवावाणी।

0: संध्याकाळचे 6 वाजतायत. आता हिंदी आणि इंग्रजीतल्या बातम्या दिल्लीहून.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता. संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई. इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया. श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा. पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए. विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया. विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई. दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा. हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया. केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई. श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया. इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है. वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैर कानूनी और हिंसक गतिविधियों में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया. उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी. उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को यह निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जा सकता है. न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है. न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है. सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था.

0: था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की आठवीं बैठक आज से हो रही है। दो दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Both Houses of Parliament witnessed multiple adjournments on the first day of the monsoon session today, following uproar by opposition parties over various issues, including the NEET paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to six former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. However, question hour could not be taken up as opposition members from the Congress and the Samajwadi Party raised slogans over the NEET issue. Despite repeated appeals by Speaker Om Birla and later by Presiding Officer Dilip Saikia to maintain order and allow the House to function, the protests continued, leading to adjournment of the House for the day. The Rajya Sabha also witnessed repeated disruptions. The House was adjourned multiple times despite efforts by Chairman C.P. Radhakrishnan and Deputy Chairman Harivansh to conduct business. Later, the upper house was also adjourned for the day. Earlier, speaking to media ahead of the commencement of the session this morning, Prime Minister Narendra Modi expressed hope that the monsoon session will be as productive as the monsoon itself, saying both play an important role in the nation's progress and the well-being of its people.
2: Monsoon ho ya monsoon satra, agar dono proactive ho, to bahut hi productive hote hain. और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: President Draupadi Murmu today called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The President was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau today. Referring to the vision of Viksit Bharat 2047, President Murmu said India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for the Indian business. Earlier, President Murmu and her Moldovan counterpart, Maia Sandu, held delegation-level talks. She also paid floral tributes at the monument of Stefan Cel Mari C. Sfant in Chisinau. The Supreme Court has asked the Solicitor General to take instructions if a special investigation team, SIT, can be set up to probe the alleged embezzlement of donations at Ram Temple in Ayodhya, Uttar Pradesh. It also asked the parties not to politicize the Ram Temple donation row. The court said that the Ram Temple donation row is a simple case of commission of crime and the court is just to ensure proper investigation. The Solicitor General told

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य प्रथम दिवसे नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणम् अधिकृत्य विपक्षी सदस्यानां सदने कोलाहलम्। उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् आदिवसाय स्थगितम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आरम्भे राष्ट्रकल्याणाय क्रियाशील सत्रस्य आह्वानम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः किशिनो राजधान्यां स्वस्य मोल्दोवा समकक्षया राष्ट्रपतिना मया संधु इत्यनया सह मण्डलस्तरीय वार्तां व्यदधात्। हॉर्मुज क्षेत्रे उत्पातस्य निरंतर वर्धनेन समीपस्थ देशेषु अस्य प्रकोपेण च ईरान अमेरिका देशयोः मध्ये अद्य नवम दिवसेपि परस्पराक्रमणानां चक्रम् अविरतं प्राचलत्। अपि च भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना उद्घोषिता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणमद्य नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे विपक्षी सदस्यानां निरंतर कोलाहलेन स्थगितम्। लोकसभायाः कार्याचरणारम्भे आदौ सदनेन षण्णां पूर्व सदस्यानां निधने सहैव कतर देशस्य अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधने शोक संतप्त श्रद्धांजलिः समर्पितः। अध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ न्यगादीत् यत् शेख हमद महोदयः आधुनिक कतर देशस्य आधारशिलां स्थापयितुं सहैव भारत कतर संबंधान सुदृढीकर्तुं महतीं भूमिकां न्यवहत्।
1: महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: प्रश्नकाल आरंभे कांग्रेस समाजवादी प्रभृतयः विपक्षी दलीयाः नीट विषयमधिकृत्य उच्चैः विरोधोद्घोषान् अकुर्वन्। अध्यक्षस्य पीठस्य च निरन्तर आग्रहम् उपेक्ष्य सदस्याः कोलाहलम् अकुर्वन्, येन षड्वारं स्थगनानन्तरम् अन्ततः लोकसभायाः कार्याचरणम् आदिवसाय स्थगितीकृतः। राज्यसभायामपि एतादृशमेव दृष्टम् दृष्टिम् अगात्। आरम्भे नवनिर्वाचिताः सदस्याः

0: किसन बंडगर आणि सहकाऱ्यांनी गायलेली लोकगीतं आत्ता आपण ऐकलीत आणि याबरोबरच लोकसंगीताचा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवरून. रात्रीचे 8:30 वाजलेले आहेत. आता प्रसारित करीत आहोत संसद समीक्षा.
1: जी आकाशवाणी है. अब आप कनकलता से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए. पहले लोकसभा. लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद. लोकसभा में नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज दिनभर सदन में कामकाज बाधित रहा और कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया. मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे. अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे. हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया. अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहाँ चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए. प्रश्नकाल में नारेबाजी करना तख्तियां लहराना उचित नहीं है. अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया. हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है. असम अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे. इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए. विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी. सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है. कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है. कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता. पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखे जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया AI वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की. शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है. ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों

को एआई सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत आईटीआई पीएमएसईटीयू योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा एआई विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सीबीएसई भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में एआई उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि एनसीएस परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों, संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र एमसीसी स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक जेडीडी ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से एनपीपी के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंगकीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉ सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जी राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा कोंकल संगमा, डॉक्टर सतीश पुनिया और प्रकाश गवड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन घोष,
स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे।

जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया। हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: संसद समीक्षा आता आपण ऐकत होतात. आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. आता थोड्याच वेळात समाचार संध्या, त्यानंतर न्यूज ऍट 9, स्पॉटलाईट आणि पब्लिक स्पीक हे कार्यक्रम दिल्ली केंद्रावरून आम्ही सहक्षेपित करत आहोत. आणि रात्री ठीक 10 वाजता संसदेतील प्रश्नोत्तरकालीन कामकाजाचं ध्वनिमुद्रण आम्ही सहक्षेपित करू दिल्ली केंद्रावरून. पण आत्ता आधी समाचार संध्या दिल्लीहून.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं?
2: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा?
1: याद रखिए, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता. संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई. दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया. जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत. पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट. और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला. अब समाचार विस्तार से. संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई. संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई. हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है. और ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
4: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई. इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका. वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया. इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है. इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है. वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली. आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं. संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं. श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया.
5: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है. साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है. चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं.
3: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई. श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया. इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है. वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है.

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारिसे स्वेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
1: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवेर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जाँच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जाँच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स द्वितीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे। एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे। देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं। इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले कीर स्टारमर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में

0: मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
2: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताओं। क्या आपने इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर लिया है? अगर जवाब नहीं है तो आज का हमारा कार्यक्रम जरूर सुने। मैं फरहत नाज और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जहां हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। लोन चाहिए, वीजा चाहिए या फ्यूचर सिक्योर करना है, ITR हर जगह काम आता है। तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा और तेज कर लीजिए और साथ में पेन पेपर भी जरूर रख लीजिए, क्योंकि आज हम आपको देंगे ऐसे टिप्स जो आपका टाइम, पैसा और टेंशन तीनों बचाएंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए इसीलिए आज हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली जी को और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा जी को। आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार भरत, आपको और सभी लिसनर्स को मेरा अभिवादन।
0: तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। श्रोताओं, आज के अंक में हम समझेंगे कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0111-2331-0481-0111-2331-4444। आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शरद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ITR क्या है और किन किन लोगों के लिए भरना जरूरी होता है?
1: देखिए फरहत, इनकम टैक्स रिटर्न अभी जैसे आपने कहा कि आपको बहुत सारे फायदे पहुंचाती है, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है। अगर आप इनकम कमाते हैं, पांच इनकम के सोर्सेस होते हैं, आप सैलरी से कमाते हैं, आप बिजनेस से कमाते हैं, आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं, आप कैपिटल गेन से कमाते हैं, आपने कोई मकान या शेयर्स बेचे हैं, या फिर एक जो रेसिड्यूअल सोर्स होता है जो बच जाती है इनकम, उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेते हैं। तो ये पांच सोर्सेस होते हैं और आयकर विवरणी इसको हिंदी में कहते हैं। अलग अलग कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और आजकल टैक्स फाइलिंग सीजन अपनी पीक पर है और करीब 11 दिन के आसपास बचे हैं। तो जिन लोगों ने अभी नहीं फाइल किया है, आज उम्मीद करता हूं आज आपकी और हमारी और अश्विनी जी की बातचीत सुनकर वो और जल्द फाइल करने के लिए मोटिवेट होंगे। और उनके मन में अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए थोड़ी सी इनकम टैक्स का जो कानून है उसकी जानकारी जरूरी होती है अपनी इनकम, क्योंकि हर तरीके की इनकम फराज अलग तरीके से टैक्स की जाती है, रेट तो एक ही होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो फोन करेंगे और उनके मन में कोई जवाब बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं वही बताना वाजिब समझूंगा जो लोग जहां पर वो अटक गए हैं, जहां उनको डाउट है।
0: जी, और आपने जैसे ही बताना शुरू किया हमारे पहले लिसनर भी हमसे जुड़ गए हैं, रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयकर रिटर्न किस श्रेणी के व्यक्तियों को जो है भरने का प्रोसीजर है, उनकी योग्यता है, और इसको हमें विस्तृत ढंग से बताएं।
1: देखिए रामाशंकर जी, आयकर रिटर्न जो है उन लोगों को भरनी होती है। दो प्रकार की रिजीम होती हैं आजकल जो ऑप्शन दी जाती है एक टैक्स पेयर को, या आप ओल्ड रिजीम में है जहां पर 2.5 लाख रुपए की मिनिमम लिमिट होती है। अगर आप न्यू रिजीम चूज करते हैं, आप मुझे आवाज से हमारे वरिष्ठ माननीय नागरिक लग रहे हैं, और 4 लाख रुपए वहां शुरू होता है न्यू रिजीम में, और आपकी इनकम अगर 4 लाख से ऊपर, आपको ये भी पता होगा कि अब तो 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको रिबेट मिल जाता है और टैक्स नहीं लगता। भारत सरकार ने जो बदलाव किए हैं, अब तो आयकर वालों को बहुत बड़ी छूट दी गई पीछे, तो 12 लाख रुपए तक तो टैक्स लगता नहीं है। तो ये तो आप थोड़ी सी हमें अगर डिटेल बताते। कुछ लोग क्या होता है फरहत के अपनी इनकम को सार्वजनिक रूप से बताते नहीं है, पर ये कार्यक्रम मुझे ऐसा है जैसे आप डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको अपने थोड़ा सा उसके बारे में, हालत के बारे में बताना पड़ेगा, तभी डॉक्टर बता सकते हैं। तो मैं सभी श्रोताओं को ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा बजाय आप छुपाने के आप बताएं, जहां तक आप बता सकते हैं तो उससे हमें जवाब देने में और सुविधा हो जाएगी।
0: जी शरद जी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइलिंग के लिए चाहिए होते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा फरहत आपने। देखिए ये जो पांच मैंने इनकम्स बताई थी, उन पांच इनकम से मान लीजिए आप सैलरी से कमाते हैं तो आपका एक फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर देता है वो होना चाहिए। इसके अलावा आजकल जरूरी हो गया

0: कर में अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल देना। तो मुझे लग रहा है वो बैंक अकाउंट अपने तैयार रखने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई इनकम आपकी सीधी बैंक में आ जाती है। और दो चीज जो मैं जरूरी बताना चाहूंगा, एक फॉर्म 26AS होता है, मैंने उसका नया नाम रखा है, वैसे तो 26AS कहते हैं, मैंने उसका नाम रखा है 26 आमना सामना, क्योंकि आपका आमना सामना हो जाता है अपनी अपनी पूरी इनकम से, तो उसको जरूर चेक करें। और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम AIS कहते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन या एनुअल इनकम स्टेटमेंट होती है, उसका भी मैंने एक नाम रखा है, उसको मैंने लिखा आईना इसे समझिए, क्योंकि वो आपको दिखा देता है पूरा का पूरा कि आपने क्या क्या किया है साल भर में, कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई शेयर्स लिए हैं, कहीं और से आपकी इनकम आई है। तो ये दो डॉक्यूमेंट जरूर चेक करने चाहिए। इसके अलावा आप सैलरी हैं तो आपका फॉर्म 16 होगा, बिजनेस है तो आपको एक बिजनेस का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, कैपिटल गेन है आपने शेयर्स बेचे हैं प्रॉपर्टी बेची है उसका हिसाब किताब होना चाहिए, और आपने कोई किराए पर मकान दिया है तो किराएदार का पूरा पैन नंबर वगैरह होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट तैयार रखिए। ये सब अब देखिए इसमें जरूरी बात जो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि रिटर्न के साथ सारे कागजात दस्तावेज लगाने जरूरी नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप कागज अपने पास रखें ही ना, आपके पास कागज होने चाहिए, क्योंकि कल को आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है, आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि ये मैंने इंफॉर्मेशन और ये फिगर कहां से लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग भरपूर तैयारी में जुटे होंगे और वो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करेंगे।
1: बिल्कुल। अच्छा राम जी, आप बैंकिंग क्षेत्र से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड और एफडी पर अगर टीडीएस कटता है तो आईटीआर इसमें कैसे दिखाएंगे?
2: देखिए कि वैसे तो एक आपका टीडीएस जो है एफडी के ऊपर वो 40,000 रुपए तक, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपका नहीं कटेगा, और सीनियर सिटीजन तो 50 की लिमिट है, लेकिन उसके बाद जो टीडीएस है वो ऑटोमेटिकल, जैसे कोहली जी ने बताया कि आपकी फॉर्म्स 26A में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आप उसके अंदर उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरा ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, तो उसके ऊपर जो टैक्स टोटल होगा उसमें से वो रिड्यूस हो जाएगा कि ऑलरेडी 10% कट चुका है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो 10% कटेगा, पैन नहीं है तो 20% बैंक काटते हैं
1: जी। और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, अमित झा जी। अमित जी
3: नमस्कार। सर कोहली सर का नमस्कार। सर
0: नमस्कार अमित जी। नमस्कार।
3: सर मार्केट मंत्रा टीम में आते हैं सर आप?
0: अच्छा अच्छा जी जी जी।
3: हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था, आज तो टैक्स से रिलेटेड है, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि हमारी इनकम ना सर मतलब एक फिक्स नहीं है, जैसे हम कोई सरकारी एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि हमारी इतना सैलरी हो एक्स वाई जेड
0: जी,
3: तो सर तो हमारी इनकम कोई मतलब एक फिक्स नहीं कर सकते, मान लीजिए किसी महीने 20,000 हो गया, मान लीजिए किसी महीने 25,000 हो गया, एक आइडिया बता रहा हूँ
0: जी।
3: तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि टैक्स स्लैब में हम नहीं आते, जो सरकार निर्धारित करती है 5 लाख वाले स्लैब पहला 1, 2, 3 में अगर हम नहीं आते हैं तो क्या हम भी टैक्स भर सकते हैं सर? क्या मतलब किस आधार पर हम टैक्स भरेंगे सर? धन्यवाद।
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है फरहद, और ये सवाल बहुत सारे श्रोताओं के मन में होता है, और मैं अमित के इस सवाल के जवाब में एक आंकड़ा देना चाहूंगा जो बताएगा कि जो अमित ने पूछा है वो कैसे। करीब 8 करोड़ से ऊपर साल में रिटर्न्स फाइल होती हैं, पिछले साल का मैं डेटा दे रहा हूं, पर उसमें से जिन रिटर्न्स में टैक्स असल में जाता है उनकी गिनती 2.5-3 करोड़ के आसपास होती है, हालांकि इस साल का डेटा तो अभी जुलाई के बाद निकल कर आएगा और बिलेटेड रिटर्न्स भी उसमें काउंट की जाती हैं। तो देखिए अमित, अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एक तो होता है जो बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब, जैसे मैंने बताया नए रिजीम में 4 लाख होता है, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख होता है, तो अगर आपकी उससे नीचे है फिर तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, परंतु अगर आपको जो 12 लाख रुपए तक का रिबेट मिलता है, अगर आप उस रिबेट के अंतर्गत आ रहे हैं और फिर आपके टैक्स नहीं आ रहा है तो फिर आपको फाइल करना चाहिए, या फिर आपका कोई टीडीएस कट गया है पर वैसे टैक्सेबल है, मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट करी हुई है, डिविडेंड कहीं से आया उस पर टैक्स कट गया है और उसको आपको वापस लेना पड़ेगा बिकॉज आपका तो टैक्सेबल नहीं है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और रिटर्न फाइल जैसा फरहद ने शुरू में बताया था कि आपको वीजा अप्लाई करना है, आपको कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, बहुत सारी जगह आयकर रिटर्न की जरूरत पड़ती है, तो बहुत से लोग मैंने देखा है कि उनको नहीं भी टैक्सेबल होता है तो वो फाइल कर देते हैं, पर टेक्निकली हम देखें तो उनको फिर जरूरी नहीं है। आप जो बता रहे हैं हमें, अगर आपका 12 लाख रुपए से कम का है तो आप 4 लाख से ऊपर है, 12 लाख से कम है तो आप फाइल करिए, पर अगर 4 लाख से भी कम है तो फिर आप बेशक नॉन फाइलिंग केस कर सकते हैं यानी ले सकते हैं ऑप्शन।
1: शरद जी छूट की बात हो ही रही है तो हम लोग क्यों ना सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो सीनियर सिटीजन के लिए आईटीआर में कोई छूट है क्या?
0: पहले हुआ करती थी किसी जमाने में, अब तो सीनियर सिटीजन को नॉर्मल सीनियर सिटीजन के लिए कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलग होती हैं, और एक सीनियर सिटीजन के लिए यह होता है कि उनको जैसे एडवांस टैक्स पे

0: करना होता है वो उनको नहीं करना होता अनलेस की वो बिजनेस इनकम है। कोई ऐसी विशेष सीनियर सिटीजन के लिए छूट नहीं है, कुछ स्पेशल डिडक्शंस हैं जो सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ के हैं उनको बहुत जानकारी है आयकर के बारे में, और वो ज्यादातर सीनियर सिटीजन मैंने देखे कि वो स्वयं अपना रिटर्न कंपाइल करते हैं। और मैं तो आज इस शो के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि जितना मुश्किल आप इसको समझते हैं उतना मुश्किल ये है नहीं। और यही शायद आज आकाशवाणी में पब्लिक स्पीक का लक्ष्य भी है कि आपको, आपके मन में कोई दुविधा है, कहीं आप फंस गए हैं, कहीं अटक गए, कोई डाउट है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप दिल खोल के पूछिए और स्वतः इसको फाइल करें। ये जो सरलीकरण किया गया है पूरा, ये जो इसका सारा डिजिटल प्रोसेस किया गया, आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के आराम से फाइल कर सकते हैं। और बाकायदा रिटर्न का फॉर्म देखने में फरहत बहुत लंबा दिख सकता है।
1: ये बात एकदम सही कह रहे हैं, हर साल हम लोग भरते हैं, लेकिन जब भरते हैं तब एक मन में संशय रहता है, डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना कुछ गलती हो जाए। तो उस चीज़
0: और मैं उसी पे आ रहा था। तो जो फॉर्म है उसके नीचे बकायदा एक मैनुअल की तरह सब इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। सिर्फ ये कि कुछ लोग थोड़ा सा उसको पढ़ने में कई बार आलस कर जाते हैं या घबराते हैं कि पता नहीं हमारे समझ आएगा कि नहीं, पर आपको हैरानी होगी जान के कि बहुत ही आसान है। आप उसको खुद करके देखिए और आपको खुशी होगी, आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगा कि मैंने स्वयं किया। जी
1: जी, एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, मकसूद हुसैन। जी मकसूद जी
2: नमस्कार। सर जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मैं मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से।
0: जी हुसैन साहब बताइए।
2: जी मेरा सवाल ये था, मेरा लड़का जनसेवा केंद्र चलाता, तो उस पर ना गांव के अंदर है जनसेवा केंद्र, तो उस पर जो है अंगूठे से जो है गांव के लोगों के जो है पैसे निकालता है
0: जी।
2: तो उसमें जो है कोई इनकम टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स जो निकालने का जो है साल भर में 20-25 लाख तक पहुंच जाता है जी। अगर इनकम टैक्स उस पर लगता है तो हम क्या करें, वो भी उपाय बताए सर जी।
0: नहीं, जनसेवा केंद्र से आपने बताया हुसैन साहब कि वो पैसे निकालता है लोगों के अंगूठा लगा के, तो ये तो किसी और के पैसे निकालता है कि वो अपने लिए पैसे निकालता है? मुझे तो लगता है जैसे किसी और को मदद करता होगा, तो इसके बदले में उनको हुसैन साहब कोई फी वगैरह मिलती होगी। तो जो इनके इसके बदले में उनको कॉम्पनसेशन मिलता है, फी मिलती है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जो लोगों के पैसे वो 20-25 लाख रुपए साल के निकालते हैं अंगूठा लगा के, फरहत मैं ठीक समझ रहा हूं, अगर तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, पर उसके बदले में आपको अगर कोई कमाई हो रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो आप हुसैन साहब या तो ये बताइए कि उनको, आपके बेटे को कितनी कमाई हो रही है, ये लोगों के पैसे हैं आपके पैसे, पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया। तो अगर आप दोबारा कॉल करें या जब भी जुड़ेंगे तो ये जरूर बताइएगा। जी
1: जी बिल्कुल। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। जी रशीद जी
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
3: मैं छतरपुर से मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है
0: जी,
3: तो क्या 12 मतलब 13 लाख हो जाए या 13,50 हो जाए या 12,80 हो जाए, एक सेंटेंस एक शब्द आता है मार्जिन रिलीफ,
0: जी जी
3: इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। दूसरा ये कि क्या न्यू रिजिम में सीनियर सिटीजन को बैंक इंटरेस्ट पर कोई छूट है या नहीं, प्लीज सर, थैंक यू।
0: अच्छा, तो सीनियर सिटीजन्स को पहले आपके मैं दूसरे वाले सवाल को लेता हूँ राशिद भाई, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स को आपने कहा बैंक इंटरेस्ट पे, तो एक सेक्शन पहले हुआ करता था 80TTB उसको कहते थे, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रिबेट होता था वो 50,000 तक होता था। तो आप राशिद भाई, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि जो ओल्ड रिजीम है वहां पर डिडक्शंस मिलती हैं इंटरेस्ट की, पर अगर आप राशिद भाई न्यू रिजीम में जाते हैं तो फिर उसमें चाहे सीनियर सिटीजन हो या ना हो, कोई उसमें रिलीफ डिडक्शन उसमें अलाउड नहीं है। न्यू रिजीम को लाने का पर्पज ही यही है कि डिडक्शंस को हटा के आपके लिए जो स्लैब्स हैं उनको आसान बना दिया गया है। अब आपका पहला सवाल था कि 12,75,000 से थोड़ा भी ऊपर जाते हैं, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक स्टडी किया सुना, उसमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है, उसमें प्रो रैटा कैलकुलेशन करी जाती है। ऐसा नहीं होता कि सीधा 12,75 से आप 5,000 भी ऊपर हुआ तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, उसका मार्जिनल रिलीफ, उसकी एक कैलकुलेशन है राशिद भाई। आपके जहन में जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है और वो उस रिलीफ को आप जरूर लीजिएगा, पर आपने बिल्कुल सटीक चीज पूछी है, बहुत बढ़िया चीज पूछी है फरहत इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ही होता
1: है। जी बिल्कुल। अच्छा राणा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और लोन लेना चाहता है तो क्या आईटीआर के अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है?
4: नहीं, आईटीआर के लिए उसको अगर जो भी बिजनेस करना चाहता है तो उसको 10 नंबर चाहिए, पैन नंबर चाहिए, और बहुत सारे जैसे काम रहते हैं जिसके अंदर लाइसेंस चाहिए या कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए उसके लिए। तो इसलिए वो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए आजकल GST भी जो है

0: जी
1: वो जरूरी हो गया है। कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो व्यापार कर रहे हैं तो जीएसटी चाहिए, पैन नंबर चाहिए, ये दो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है।
2: और मैं आपकी इजाजत हो फरहत तो इसमें कुछ अश्विनी इजाजत दें तो मैं ऐड कर दूं। क्या होता है कि दिक्कत होती है जब कोई अपने नाम से काम शुरू करने जा रहा है तो बैंक वाले उसका अकाउंट ही नहीं खोलते हैं कि भाई हमें कोई प्रूफ चाहिए। तो ऐसे में एक हल निकला है, हल ये निकला है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन एक होता है जिसके अंदर एमएसएमईज को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को उद्यम कैटेगरी में लाके और वहां पर वो रजिस्ट्रेशन करा के, तो इसमें बैंक अकाउंट एक प्रूफ ऑफ एड्रेस एक रजिस्ट्रेशन बन जाता है। जीएसटी भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर उसमें क्योंकि अगर आप मर्चेंडाइज में डील कर रहे हैं बड़े शहर में तो 40 लाख रुपए तक का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता है, तो कुछ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन जीएसटी शुरू में लेने में हिचकिचाते हैं। जब छोटा काम होता है, जैसे जैसे काम बढ़ता है, तो बिल्कुल पैन नंबर का आपने ठीक बताया, पैन नंबर और उद्यम का रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं।
1: लेकिन बैंक वाले, आप कॉलेज बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन बैंक में आप जाओगे करंट अकाउंट खोलने के लिए तो वो जीएसटी नंबर पहले कहेंगे, उनको ये समझाना और बताना वो मतलब बहुत ज्यादा एडमेंट होते हैं। तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई इस लिमिट तक उसको जीएसटी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक प्री कंडीशन बता दें।
2: बैंकिंग महकमे से आते हैं, मुझे लगता है आप बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं।
0: लोगों से हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका प्रश्न ले लेते हैं। नागपुर से एनपी सिंह जी।
3: सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मेरा नाम एनपी सिंह है, मैंने एब्रीविएशन बताई थी नागपुर।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
3: शरद जी आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली।
2: अच्छा, प्लेजर सर।
3: एज अ डॉक्टर आई नीड अ प्रिसाइज आंसर।
2: हाँ जी।
3: एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, दूसरा थोड़ा लेंथी है
2: जी।
3: पहला ये है कि स्क्रूटनी में किन लोगों की आती है, अनियमितता को छोड़कर लॉटरी सिस्टम होता है। दूसरा आई एम सो सॉरी। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन यह है कि जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या फर्क है, मोटी मोटी बातें बता दें ताकि हम उसका ध्यान रखें।
2: अच्छा,
3: और कौन सी ऑप्शन बेटर
2: जी? आपने स्क्रूटनी का पूछा, मैं क्योंकि कुछ श्रोता नए होंगे जिनको जिन्होंने ये शब्द नहीं सुना हुआ है। स्क्रूटनी का मतलब होता है, एक सिस्टम होता है इनकम टैक्स में, उसको हम कैस बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम होता है। तो उसमें जो एआई आजकल सॉफ्टवेयर आयकर विभाग यूज करता है, उसमें जिन लोगों की, मैं कुछ एक उदाहरण आपको देता हूं, जैसे जिन लोगों की आय सडनली एक साल में गिर जाती है, फरहद आप ध्यान दे रहे हैं, तो उनका फिर एकदम से वो उठा लेता है, या किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा लॉस किया है तो वो एकदम से ध्यान अपनी तरफ खींचता है। आपने कुछ और गलती, आप बार बार रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, ये भी, तो ये कुछ ग्राउंड होते हैं। आपने सिंह साहब बहुत रास की बात पूछी है, तो मैं कुछ कुछ आपका जिक्र कर रहा हूं। और दूसरा आपने पूछा ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, देखिए ओल्ड रिजीम में न्यू रिजीम में फर्क ये, पहली बात तो दोनों रिजीम सभी टैक्स पेयर्स के लिए खुले हुए हैं, ये सभी श्रोताओं के काम की बात है। जो ओल्ड रिजीम है उसमें जब सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो वो उन लोगों के लिए जिनका डिडक्शंस को मिला के, डिडक्शंस को लेने के बाद टैक्स कम आता है, पर अब एक डेटा ये कहता है और मेरा अपना आकलन ये था कि करीब 75% टैक्स पेयर्स को अब न्यू रिजीम सूट कर रही है अब की बार, जो जैसा लोग बता रहे हैं। तो न्यू रिजीम उनके लिए है जिनको डिडक्शंस नहीं लेनी है, कोई एग्जेम्पशंस नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से रिटर्न, कुछ बहुत थोड़ी सी डिडक्शंस, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है एनपीएस उसको छोड़ के, बाकी सारी डिडक्शंस न्यू रिजीम में हटा दी गई है। तो मैं सलाह ये दूंगा सिंह साहब आपको कि जो भी, और सभी को, कि जो भी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम इधर जाएं कि उधर जाएं कि दुविधा में फंसा हुआ है, उसके लिए आयकर पोर्टल पर ही एक कैलकुलेशन की ऑप्शन है कि आप अपने इनकम को ओल्ड रिजीम में डाल के देखें, न्यू रिजीम में डाल के देखें, जहां पर कम टैक्स आता है उसको आप चूज कर लें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि एक साल आपने ओल्ड रिजीम ली तो अगले साल आपको फिर हमेशा ओल्ड रिजीम ही लेनी है, आप स्विच भी कर सकते हैं। सिर्फ बिजनेस इनकम जिनकी है उनको यह सुविधा एक ही बार दी जाती है कि वो इस पाले से उस पाले में जा सकते हैं, पर बाकी की इनकम से है तो हर साल आप ओल्ड और न्यू रिजीम के बीच में सिंह साहब चॉइस रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मोटा लंबा डिस्कशन है और भी क्योंकि कॉलर्स हैं तो मैं थोड़ा सा क्रिस्प रहने की कोशिश कर रहा
0: हूं। अश्विनी जी भी कुछ कहना चाहते
1: हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में, जैसे कोहली जी ने कहा कि ओल्ड रिजीम में बहुत सारी डिडक्शंस मिलती थी तो उसके लिए लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे एलआईसी में है, एनएससी में है, एफडी है या इस तरह की, तो वो या पीपीएफ है, वो न्यू रिजीम में भी वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, वो उसका बेनिफिट ना लें फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग जो है वो एक आपके लिए अच्छी जरूरत है।
0: बिल्कुल, बैंकिंग क्षेत्र और आयकर विभाग जो एक तरीके से जुड़ गया है आज, तो तीखी जो नोकझोंक है वो हम लोग कर रहे हैं। और एक और प्रश्न हम ले लेते हैं शिमला से राकेश जी का। जी राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला से बात कर रहा हूँ। और मेरा प्रश्न ये है।

0: हैं कि जो जो हमारे जो भारतीय नागरिक हैं विदेश में जाते हैं, लेकिन विदेश से जो है अपने परिवार को पैसा भेजता है, तो क्या वो भी क्या बोलते आयकर रिटर्न भर सकते हैं? और मेरा ये प्रश्न है।
1: देखिए राकेश जी, जो विदेश में नागरिक जाते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं, तो वहां पर अगर कमाई है और अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इसमें आयकर विभाग में दो तीन कैटेगरीज दी हुई हैं, एक को हम एनआरआई कहते हैं, एक को हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं, और एक को हम रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं। तो इसमें कैटेगरी होती है, पर आपके सवाल से मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये शख्स जो है भारत से बाहर ही रहते हैं, पर वो पैसा अपने परिवार को यहां पर भेजते हैं। तो खाली पैसा भेजना राकेश जी, टैक्स नहीं लगेगा उस पर। हाँ, उस पैसे को भेजने के बाद जिस भी परिवार मेंबर को वो इनकम मिली है, उसको जब वो कहीं निवेश करेंगे, उससे जो इनकम होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। पर उस व्यक्ति को जो एनआरआई है, उसको केवल भारत में भेजने पर टैक्स नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि 180 दिन अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह जाता है, तो वो टेक्निकली फिर नॉन रेजिडेंट हो जाता है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कई सारी राकेश जी बारीकियां हैं कि मान लीजिए वो उसकी यहां पर भी इनकम है, फरहद वहां पर भी इनकम है, तो फिर दो देशों के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी होती है, जिससे उसको डबल डबल टैक्स ना देना पड़े। पर आपने जो पूछा था, मुझे लगता है मैंने उसका जवाब दे दिया है।
2: जी अच्छा, एक और प्रश्न मेरे पास आया है व्हाट्सएप के माध्यम से। संजीव जी एनजीओ चलाते हैं और पिछले दो साल से उन्होंने अपना रिटर्न नहीं भरा है, लेकिन वो अब लॉस की वजह से एनजीओ को क्लोज करना चाहते हैं। तो जब वो क्लोज करेंगे तो क्या उनके लिए जो पिछला रिटर्न है वो मतलब भरना जरूरी हो जाएगा?
1: देखिए, अगर तो एनजीओ रजिस्टर्ड है और सरकारी तरीके से रजिस्टर्ड है, फिर तो भरना पड़ेगा। हो सकता है उनसे सवाल पूछा जाए, क्योंकि एनजीओ फर्क दो तरीके के होते हैं। एक एनजीओ होते हैं जिन्होंने आयकर के अंतर्गत एग्जेम्पशन ली हुई होती है, क्योंकि एनजीओ आप मुनाफे के लिए तो काम करते नहीं है, आप तो जन सेवा के लिए करते हैं, तो उनको फिर आयकर के अंतर्गत एक अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके एग्जेम्पशन लेनी पड़ती है। अगर उन्होंने ये ली हुई है, फिर तो इनको फाइल करनी पड़ेगी। पर अगर वो आयकर में अनरजिस्टर्ड एनजीओ हैं, तो फिर हो सकता है बिना उसके भी वो उसको रैप अप कर पाए। और मैं ये जानकारी दे दूं, आपके सवाल से एक बहुत जरूरी सवाल निकलता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं हमने तीन साल से फाइल ही नहीं करी,
2: हाँ,
1: तो अब क्या होगा, क्या हम फाइल कर सकते हैं, गलती हो गई, रह गई जाने में अनजाने में। तो उनके लिए आयकर में एक नया प्रावधान किया गया, जिसको हम ITRU कहते हैं, ITR अपडेटेड। तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं, पर उसमें शर्त यह है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी पिछले साल से, तीन साल की कर सकते हैं, पिछले साल से कम 25%, दो साल पुरानी है तो 50%, तीन साल पुरानी तो 60% ज्यादा इनकम अगर आप डिक्लेयर करेंगे, तब आपको सरकार यह इजाजत देगी कि आप पुरानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वरना पुरानी रिटर्न फाइल नहीं होती है, और वो फिर कंपलसरी, जब अगर ऐसी इनकम पकड़ी जाती है तो उसको फिर हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कैटेगरी में लाके उनको नोटिस वगैरह, थोड़ी सी फिर मुसीबत का सबब बन जाता है।
2: शरद जी, प्रश्नों का दौर जारी है। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से प्रकाश जी। जी प्रकाश जी।
3: भरत जी, आपको दोनों विशेषज्ञों को सहप्रेम नमस्कार। प्रकाश जांगड़ बोल रहा हूँ जयपुर के।
1: सर हमारा भी सब प्रेम,
2: आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।
3: सर सीधा सवाल मेरा राणा जी से है।
1: जी
3: राणा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग आदमी है और वो अपना छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहता है, छोटा उद्योग जैसे क्या कुटीर उद्योग बोलते, तो उसमें बैंक में क्या सुविधा एक आम जन के और दिव्यांग के बीच में कोई फर्क है, या क्या थोड़ा सा इस पर स्पष्ट करें?
4: नहीं, वैसे मेरे हिसाब से दिव्यांग के लिए कोई ऐसी कोई अलग कैटेगरी नहीं है, लेकिन उनको वो सुविधाएं देते हैं, मतलब एडिशनल वो कुछ जो अगर लोन लेना चाहते हैं या इस तरह कोई भी व्यापार करना चाहते हैं, उस तरह का उनको एक प्रायोरिटी दी जाती है बैंक के अंदर कि भाई वो उस कैटेगरी में लोन ले सकते हैं, लेकिन उनको कोई फैसिलिटीज मिलती हूँ एडिशनल, वैसा कुछ नहीं है।
2: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है द्वारका से रमेश जी का। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हाइल फाइलिंग ITR दैट लीड टू इनकम टैक्स नोटिसेस?
1: हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने पूछा है। बहुत गलतियों की, कहते हैं सबसे आसान काम दुनिया का फर्द होता है किसी की गलतियां निकालना, और आपने तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया। देखिए, आपने पैन नंबर गलत डाल दिया, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, आपने अपने, सबसे बड़ी गलती होती है अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत डाल दिया, तो वहां तो आपको रिफंड आना होगा, तो रिफंड ही आपका नहीं आएगा। इसके अलावा आपने इनकम गलत हेड में डाल दिया, और आपने क्या किया, रिटर्न भरते टाइम वेरिफिकेशन नहीं किया। बहुत लंबी फेरिस्ट है गलतियों की, तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपको लग रहा है कहीं आप गलती कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये महोदय ने सवाल पूछा है, तो हमसे आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए जहां आपको अंदेशा हो रहा है कि मुझसे गलती हो, क्योंकि गलती की लिस्ट सारा इतनी लंबी है कि फिर बाकी का सारा समय हम गलतियां को बयान करने में चला जाएगा।
2: बिल्कुल नहीं, हम समय अपना
4: ऐड करूंगा इसमें एक कि कुनी, अगर ये अगर वो मैनुअल भर रहा है तो उसको समस्या आएगी, लेकिन

0: लेकिन अगर ऑनलाइन वो आजकल बहुत इजी है रिटर्न भरना, वो भरता है और कहीं गलती करता है तो उसकी सबमिट नहीं होती, अप्रूव नहीं होती।
1: नहीं, उसमें उसमें राणा जी ये होता है कि कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली ठीक करता है पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो नहीं भी ठीक करता,
0: नहीं ठीक करता और फिर वो उसको आपको अप्रूव या सबमिट नहीं करने देता।
1: नहीं नहीं, वो हो जा, मान लीजिए मैंने फिगर ही अपनी गलत भर दी, इनकम
0: फिगर गलत है लेकिन तो, जैसे अकाउंट नंबर गलत है या कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो उस गलती को वो बताता है कि ये नंबर जो है जाके आप,
1: काश ऐसा हो जैसा आप कह रहे हैं, पर उसमें उसमें बहुत सारी चीजें गलत चली जाती हैं और फिर वो 26AS बिना देखे फाइल कर दिया, AIS बिना देखे फाइल कर। मैंने कहा ना गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी है,
2: ध्यान से भरिए अपनी हर एक चीज, डॉक्यूमेंट सही तरीके से रख के एक एक चीज डिटेल सही से डालिए तो शायद आप गलती इस करने से बच जाएंगे। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, अक्षय कुमार जी। अक्षय जी
3: नमस्ते मैडम।
2: नमस्कार
3: पैनल को नमस्ते।
1: नमस्कार
3: सर, पिछले साल जिस यूजर आईडी, वो तो यूजर आईडी से ही होता है,

0: और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, अक्षय कुमार जी। अक्षय जी
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार
1: पैनल को। नमस्ते।
2: नमस्कार
1: सर। पिछले साल जिस यूजर आई डी, वो तो यूजर आई डी से ही होता है, जिस पासवर्ड से हम भरे थे वो पासवर्ड इस बार जब हम भर रहे हैं तो उसमें लिख के आ रहा है कि ये पासवर्ड गलत है। मैं एक दो बार ट्राई किया तो लिख के आ गया कि आपका लॉक कर दिया गया।
3: तो
1: अगर अनलॉक करने के लिए जब हम उसमें ट्राई कर रहे हैं तो बोल रहे हैं आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आपका लिंक नहीं है, जबकि मैं कई सालों से भर रहा हूँ, रेगुलर आई
3: टी आर। तो अक्षय जी इसमें ये कर सकते हैं आप, वैसे तो फॉरगॉट पासवर्ड का उसमें ऑप्शन होता है जैसे आम होता है, और आपका हो सकता है कि मोबाइल नंबर, नहीं तो तुरंत मोबाइल पे ओटीपी आता है और उसके जरिए आप कर सकते हैं आप, क्योंकि आप फंस गए हैं यहाँ पर, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, एक सीपी ग्राम्स करके वेबसाइट है, उसमें आप ये तुरंत कंप्लेंट डालें, और सीपीसी बैंगलोर है, उसके फोन नंबर भी हैं, क्योंकि अब समय कम है, वैसे तो बहुत जल्दी उसकी सुनवाई होती है। तो सीपी ग्राम्स का एक ई निवारण के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए सीपी ग्राम्स में आप जाके डालें, अपना पैन नंबर दें, अपना नाम बताएं, और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताएं, तो आपके ऊपर तुरंत कॉल आएगा। या मैं आपको सलाह दूंगा सीपीसी बैंगलोर में फोन नंबर उसका ऑनलाइन दिया हुआ है, आप निकाल के उसको फोन करें, क्योंकि ये तो आप फंस जाएंगे, समय कम है, 11 दिन बचे हैं, पता लगा कि इनका अक्षय जी का जो है मामला अटका रह गया, तो हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर पेनल्टी लगे।
0: जी शरद जी, हमारे पास भी समय बहुत कम है, तो इसीलिए हम लोग एक और लिसनर का जल्दी से प्रश्न ले लेते हैं, हरिद्वार से रवि जवालिया जी। जी रवि जी।
4: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार
4: जी, मैं रवि जवाली हरिद्वार से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर फर्ज करो कोई बंदा मतलब इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, तो वो 2-3 साल तक नहीं भर रहा है, तो उस पर क्या गवर्नमेंट क्या पनिशमेंट देगी? सर मैं इसकी जानना चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
3: अरे अरे रवि जी, आप क्यों नहीं भर रहे हैं आप, पहले तो ये है, पर चलिए आपने पूछा है तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा। बहुत उसमें सख्त पेनल्टी का प्रावधान होता है, उसमें आपके ऊपर टैक्स इवेजन का मतलब, आपकी अगर 12 लाख से ऊपर है आप नहीं भर रहे हैं तो टैक्स इवेजन का शक आपके ऊपर बैठ जाएगा। पेनल्टीज बहुत भारी है, मैं पेनल्टीज बता के फरहद इनको डराना नहीं चाहता हूं, पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब जागे तब सवेरा, अब जितना हो गया सो हो गया, इस साल से आप फाइल करिए, और पिछले 2 सालों की भी आप रवि आप ITRU जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ITR अपडेटेड फाइल कर सकते हैं, थोड़ा सा टैक्स फालतू जाएगा, कम से कम पेनल्टी से आप अपने आप को बचा पाएंगे।
0: और अब थोड़ा सा समय बचा है तो हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि अपने श्रोताओं से एक अपील आप करें।
3: बस मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि पहली तो मैंने जो बोला उसको दोहराना चाहूंगा कि खुद फाइल करने की कोशिश करें और समय पर फाइल करें, सारे अपने कागजात अपने सामने रख के फाइल करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले एक दफे उसको दोबारा चेक कर लें, और सबसे जरूरी बात 26AS और AIS को एक दफे वेरीफाई कर लें। ऐसा तो नहीं वहां कोई एंट्री है जो आप नहीं दिखा रहे हैं, या कई बार AIS में फरद ऐसी एंट्री आ जाती है जो आपकी होती नहीं है, किसी ने पैन नंबर गलत डाल दिया किसी और के, तो वहां पर फीडबैक का ऑप्शन होता है, तो 26AS और AIS को बिल्कुल ना भूलें। और एक जरूरी बात जल्दी से बता दूं, ऑटो फिल्ड रिटर्न आ रही है आजकल अपने आप भरी हुई, उसमें आप उस पर आंख बंद करके यकीन मत करिए, एक दफे उस इंफॉर्मेशन को चेक जरूर कर।
0: बिल्कुल अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी बिल्कुल, और इसको हम इग्नोर नहीं करें और वेट नहीं करें, 31 जुलाई के बाद एक्सटेंड होगा, यानी डेट एक्सटेंड होगी, डेट एक्सटेंड हो ना हो आप 31 जुलाई लास्ट डेट मान के जो है रिटर्न भरिए।
0: जी, और अगर कोई सवाल हो तो आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी दोनों मेहमानों का कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप स्टूडियो में मौजूद रहे और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब।
3: शुक्रिया।
0: और इसके साथ ही मुझे भी दीजिए इजाजत, और हमने सीखा आज की ITR सिर्फ टैक्स का कागज नहीं है, यह आपकी आर्थिक पहचान भी है, तो जरूर भरें, टाइम से भरें। और इसके साथ ही फरहत नाज को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।

मुझे सभा को अपने छह पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जो अभी तेलंगाना में है 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेन दला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी, वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे, वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्तीय संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे, वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धन पालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे, इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख

0: ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
2: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ

0: अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न, मान्य सदस्यगण प्लीज, आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर यह अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा यह अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज, प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर वन, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
1: प्रश्न नंबर एक, प्रश्न संख्या एक, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख, क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग, उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ, ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग, क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
2: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के ढोडिया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है?
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने पांच प्रण लेलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण लेलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण लेलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोध संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा, और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया, उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुकी है।

0: और उसमें से 3,70,000 मैनुस्क्रिप्ट अब ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और उसमें माननीय कमीशन ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी उसको भी वो सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
1: माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है, मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा, नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा, अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार। प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल है। इसके साथ ही ये